श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सवेरे के सुहाना मौसम में रुवाबानी ध्वनि के सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर। आश्रोता लोग रुवत पता ही बा कि अभी वक्त हो गई बार राउर आपन कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल के, जॉन की लेके आवेली राउर रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले स्वीकार करी हमार स्नेह भरल नमस्कार। चली अब हम अपना घरेलू नुस्खा के पोटली से निकाली कुछ नुस्खा। दोस्त लोग सबसे पहले जानल जाई सेहत खाती आसान घरेलू नुस्खा। हिचकी आवे पर अगर लगातार हिचकी आ रहल होके तो दोनों कान में उंगली डाल के सांस के थोड़ा देर खाती रोक ली, हिचकी आवल एकदम बंद हो जाई। खांसी आवत होके तो 2 से 3 चुटकी फूलल होकर सुहागा शहद में मिला के बच्चा के चटाई, ऐसे बच्चा के खांसी से छुटकारा मिल जाए। मुंह में छाला पड़े पर टमाटर के रस में पानी मिला के कुल्ला करे से जीभ या मुंह के छाला ठीक हो जाए। रक्त प्रदर में सफेद जीरा और मिश्री समान मात्रा में मिला के रोज सुबह शाम 2 से 3 ग्राम ताजा पानी के साथ सेवन करे से रक्त प्रदर में आराम मिलेला। सुरीला आवाज खातिर 1 कटोरी पानी में 1 मुट्ठी गेहूं के चोकर उबाल के छान ली। पानी के गुनगुना होके पर चाय की तरह चुस्की से दिन में 2 बार पी, ऐसा 2 से 3 दिन करे पे आवाज में फर्क नजर आवे लगी। दाग धब्बा पड़े पे दो चम्मच ब्रांडी में पुदीना के चटनी मिला के चेहरा पर लगावे से दाग धब्बा दूर हो जाला। कब्ज होके पे आधा ग्लास पानी में आधा ग्लास दूध मिला के 10 ग्राम अमलतास की गुद्दा डाल के उबाली आ आधा रह जाए पर उतार ली। सोते समय एके पी जाई, इसे पुराना से पुराना कब्ज दूर हो जाए।

0: चलिए अब जानल जाओ एसिडिटी के घरेलू इलाज। अम्लपीत रोग में मुलेठी के चूर्ण या काढ़ा बना के पिए से ई काढ़ा रोग के नष्ट करेला। नीम के छाल के चूर्ण पानी में रात में भिंगा के रखी आ छाल के पानी छान के पियल ई रोग के शांत करेला। अम्लपीत यानी एसिडिटी रोग में मरीज के तरल पदार्थ देवे के चाहिए। ए तरह त्रिफला के प्रयोग या दूध के साथ गुलकंद के प्रयोग या दूध में मुनाका उबाल के सेवन करे के चाहिए। मानसिक तनाव कम करे खातिर योग आसन एवं औषध के प्रयोग करें। अम्लपीत रोगी के मिश्री आंवला गुलकंद मुनाका आदि मधुर द्रव्य के प्रयोग करे के चाहिए। बथुआ चौलाई लौकी करेला धनिया अनार केला आदि साग व सब्जी के प्रयोग करी। दूध के प्रयोग नियमित रूप से करी। नया धान में अधिक मिर्च मसाला वाला खाद्य पदार्थ मछली मांसाहार मदिरा पान गरिष्ठ भोजन गर्म चाय कॉफी दही एवं छाछ के प्रयोग साथ ही तुअर दाल एवं उड़द दाल के प्रयोग कदापि ना करे के चाहिए अम्लपीत रोगी के। अम्लपीत रोगी के समय रहते चिकित्सा ना करवाए या रोग के अनदेखा करे पर रोग अल्सर के रूप धारण करेला। आयुर्वेद में अम्लपीत के दूर करे खातिर अनेक औषधि बा। अपना चिकित्सक से सलाह लेके एकर सेवन करी। तो दोस्त लोग ई तरह ला एसिडिटी के घरेलू इलाज आप चले जानल जाओ छोटा छोटा बीमारी के घरेलू इलाज। गैस होके पर पीसल सौंठ में स्वादानुसार नमक मिला के गर्म पानी से या सौंठ लेवे से फायदा होला। शरीर में दर्द होके पर सोडा बाइकार्बोनेट व कच्चा फिटकरी दोनों के समान मात्रा में एक एक ग्राम पीस के एक गर्म पानी के साथ लेवे से काफी आराम होला। यदि बहुत ज्यादा हिचकी आ रहल होके त गर्म पानी के साथ दो लौंग खाए से हिचकी बंद हो जाला। पड़ जाए ऐसे बचे खातिर सरसों के गरम तेल से सिकाई करे के चाहिए। दिल के मरीज के भोजन में सोयाबीन के तेल प्रयोग करे के चाहिए काहे कि ई कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होला। कब्ज दूर करे खातिर सब्जी में लहसुन डाल के पकाई आ हर रोज लहसुन के प्रयोग करे से कब्ज ना रहेला। कान के दर्द सताए त एक चम्मच तिल के तेल में लौंग डाल के एक गरम कर ली आ कान में ई तेल के 4 से 5 बूंद टपकावे से कान के दर्द मिट जाला। के पे गुनगुना पानी में नींबू के रस डाल के ओके गरारा कईल जा सकेला या घूंट घूंट के पियल जा सकेला। तुलसी पत्ती पुदीना के पत्ती आधा बड़ा चम्मच अदरक तथा गुड़ 2 कप पानी में उबाली अछान के ओसे स्नान करी उबलत पानी में नींबू निचोड़ के वो पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। सूते से पहले सरसों के तेल नाभी पर लगावे से होठ ना फाटेला। 250 ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होला। बच्चा के खांसी आवत होके तो ऐसे में 2 से 3 चुटकी फुलल होकल सुहागा शहद में मिला के बच्चा के चटाई, ऐसे बच्चा के खांसी से छुटकारा मिल जाए। खातिर एक कटोरी पानी में एक मुट्ठी गेहूं के चोकर उबाल के छान ली आ ये पानी के गुनगुना होके पर चाय के तरह चुस्की से दिन में 2 बार पी ता ऐसे में 2 से 3 दिन में आवाज में फर्क नजर आवे लगी। दाग धब्बा होके पे 2 चम्मच ब्रांडी में पुदीना के चटनी मिला के चेहरा पर लगावे से दाग धब्बा दूर हो जाला। तो दोस्त लोग ई रहल है आज के घरेलू नुस्खा। तो हमरा ई उम्मीद बा कि रउआ ई नुस्खा के जरूर अपनाए। तो अब हमरा के यानी अपन दोस्त दीपाली के दिन जाए के विदा। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: मैंने आपको बताया था कि विदुर के आदेश पर रातों रात वो सुरंग बन गए जिसका मुंह लाख के बने भवन से बाहर निकलता था। पांडव जिस हाल में फंसे थे, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कभी कुछ नहीं छिपा, संसार की एक भी घटना नहीं। अब भीम तो तोड़ फोड़ वाला इंसान था, तो वो भवन की दीवार को तोड़कर बाहर निकलने को उतावला था। जबकि युधिष्ठिर शांति से बच निकलने की बात कर रहे थे। ऐसे में कुंती ने बहुत बुद्धिमानी से अपने बेटों को संभाला।
2: रुको भीम, ये क्या करने जा रहे हो?
9: कुछ नहीं माता, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दीवार बनी किस चीज से।
2: तुम्हारे तात विदुर की सूचना पर तुम्हें विश्वास नहीं है पुत्र?
9: विश्वास है माता, पर मैं अपनी आंखों से कौरवों की नीचता देखना चाहता हूँ।
10: कौरव कितने नीचे गिर चुके हैं ये हमें बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है भीम, पर इस समय क्रोध या प्रतिशोध की बात सोचना भी हमारी मूर्खता होगी।
2: पुत्र युधिष्ठिर, भीम ऐसी कोई भूल नहीं करेगा।
11: हम तो बोलेंगे कुलोचन महाराज की जय बोलेंगे।
12: आप बहुत अच्छे हैं महाराज, आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा।
11: आपने पूछा, केवल आपने पूछा। आपकी जय हो महाराज, जय हो।
13: सुन रहे हैं आप लोग, पुरोचन ने ढेर सारे लोगों को बुलाया है।
14: वो हमारी मृत्यु का उत्सव मना रहा है। देखा माता, उसने भवन का द्वार भी बंद कर दिया है जिससे यही हमारी चिता बन जाए।
13: सहदेव, इसका अर्थ है कि वो आज की रात ही आग लगाएगा।
2: हमें इसी समय यहाँ से निकल जाना चाहिए।
9: आप सबको जाना है तो जाइए, मैं यहाँ से ऐसे कायरों की तरह मुंह छुपा कर नहीं जाऊंगा।
2: नहीं भीम, तुम भी हमारे साथ निकलोगे।
12: आज से पहले कभी ऐसी न रात आई थी, ऐसा उत्सव हुआ था।
15: और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि ये उत्सव हस्तिनापुर के युवराज के सम्मान में हो रहा है। पियो पियो पियो और पियो, जी भर के पियो। कुछ घड़ी बाद इधर मैंने आग लगाई और उधर ये भवन पांडवों के साथ स्वाहा।
16: और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मामा, अब तक कोई दूत आया क्यों नहीं?
17: शांत भांजे शांत, ऐसी उतावली करोगे तो मुख जल जाएगा। षड्यंत्र का फल बहुत गर्म होता है, उसको फूक फूक कर खाना सीखो।
2: ईश्वर,
18: महारानी, महारानी, आप नींद से ऐसे क्यों जाग गई?
2: मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा महाराज। मैंने देखा कि पूरे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है, सब चीखते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, किसी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा।
18: शुभ शुभ बोलिए महारानी गांधारी, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा।
2: मैं कह रही हूँ कि सारे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है और आप सिर्फ अपने पुत्रों की बात कर रहे हैं।
18: दुर्योधन, पुत्र कहाँ हो? पुत्र तुम ठीक तो हो ना पुत्र?
2: अरे क्या कर रहे हैं आप?
19: क्या हुआ महाराज?
18: दुर्योधन कहाँ? उसे मेरे पास बुलाओ, वो ठीक तो है ना?
2: मैं तो स्वप्न की बात कर रही हूँ महाराज, और आप भागने दौड़ने लगे। जाओ दासी, जाओ यहाँ से।
18: स्वप्न कभी कभी सच भी हो जाते हैं देवी गांधारी, बल्कि भोर के स्वप्न अक्सर सच होते हैं। हे ईश्वर, अब कौन सा संकट आने को है?
2: भीम, तुम ये मशाल क्यों लेकर आए हो? हमारे साथ चलते क्यों नहीं?
9: आप जाइए माँ, आप सब सुरंग में प्रवेश कीजिए, मैं कुछ देर बाद आऊंगा।
20: कहाँ है माँ, जल्दी आइए।
9: देखिए माता, भैया आपको बुला रहे हैं, आप जाइए, मैं स्वयं आग लगा देता हूँ इस भवन को। अचानक लगी आग से नशे में डूबे षड्यंत्रकारी भी भस्म हो जाएंगे।
2: भीम, अब चलो, भागो जल्दी।
9: चलिए
21: आग कैसे लग गई? आग आग आग, आग।
9: मैं आपको उठा लेता हूँ माँ।
0: नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ।
10: तुम थक जाओगी माँ।
9: अब हट मत करो माँ, आओ।
0: अरे अरे भीम, क्या कर रहे हो? पुत्र मैं गिर जाऊंगी।
9: ना मैं गिरूंगा और ना आपको गिरने दूंगा। सहदेव, अब सुरंग चौड़ी हो गई, चाहो तो तुम मेरे दूसरे कंधे पे आ जाओ।
21: नहीं भैया, तुम बस माता को ही संभालो।
13: अब अंधेरा कुछ कम होने लगा है, लगता है सुरंग का द्वार पास ही है।
22: उठो भांजे, उठो, अब सोने का समय कहाँ है?
13: अरे नींद कहाँ आई मामा, पूरी रात दूध की प्रतीक्षा में शैया पर उलटता पलटता रहा।
22: वाह भांजे, अच्छा अच्छा है, अच्छा है। रात भर जागने से तुम्हारा जो मुख है ना, सूज गया है। पांडवों की शोक सभा में ऐसा मुख अच्छा लगेगा सूजा हुआ। अरे हाँ, तुमने युवराज वाला मुकुट तो पहनकर देख लिया है ना, तुम्हारे इस विशाल सर पर ठीक से बैठ तो रहा है ना।
13: मुकुट की चिंता छोड़ो मामा, पहले ये पता करो कि पांडव यमलोक पहुंचे भी या नहीं।
23: धुएं की क्या बात कर रहे हो महामंत्री जी? अग्नि की ऐसी प्रचंड लपटें उठ रही थी कि वहाँ पूरा वर्णावत इकट्ठा हो गया था।
13: वो पुरोचन मिला या नहीं?
23: लोग उसे ही ढूंढ रहे थे, शायद लोगों को संदेह हो गया था कि ये सब उसी का किया धरा है, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो भी उसी अग्नि में भेंट चढ़ गया।
13: ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने बचाव के लिए कुछ तो व्यवस्था की होगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि किसी ने वो सुरंग देख ली तो
23: उसे तो मैंने पांडवों के निकलते ही पूरी तरह पाट दिया है, किसी को कोई संदेह तक नहीं होगा। किंतु महामंत्री, एक कक्ष में।
13: एक कक्ष में? क्या क्या था कक्ष में?
23: महामंत्री, छह जले हुए शव मिले हैं। मुझे कुछ आशंका हो रही है कि कहीं।
24: नहीं नहीं, पांडव कुमारों के जलने की कोई आशंका नहीं है महामंत्री जी।
13: नाविक, तुमने उन्हें नदी पार तो करा दी थी ना?
24: हाँ महामंत्री जी, मैंने स्वयं उन्हें नदी पार कराई थी, इसलिए तो कहा कि संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, पांडव पूरी तरह सुरक्षित है।
13: तुमने कहाँ छोड़ा था उन्हें?
24: मैं उन्हें हिडिंबन में छोड़कर आया हूँ।
13: पर फिर वो जले हुए शव किसके हैं?
24: वो पांडवों के तो नहीं है महामंत्री जी, क्योंकि उन्हें नदी पार कराने के बाद मैं माता कुंती के चरण छूकर लौटा हूँ।
13: ठीक है, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ।
24: जो आज्ञा महामंत्री जी।
13: और सुनो, हस्तिनापुर के सीमा के पार निकल जाना, जैसे तुम यहाँ कभी थे ही नहीं।
0: भीम पुत्र, बस करो, कंधे से उतारो अब हमें। अब इतनी भी नहीं थकी हूँ कि।
9: तो क्या आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ? माँ, मैं आपको उठाकर महीने भर भी चलता रहूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होगा।
0: हाँ पुत्र भीम, पर
10: हमें तेज भी चलना है माँ। हस्तिनापुर से इतनी दूर निकल जाना होगा जहाँ हमें कोई पहचान न सके।
13: यहाँ तो जहाँ तक दृष्टि जाती है बस वन ही वन है।
21: किसी ऋषि महर्षि का आश्रम भी नहीं है कि जहाँ हम जा सके।
13: भैया, सबसे पहले हमें ये राजसी वस्त्रों को फेंक देना चाहिए, इन वस्त्रों में हमें कोई भी पहचान सकता है।
21: बिल्कुल सही बात कही भैया, इसलिए मैंने उस भवन से निकलते हुए कुछ साधारण वस्त्र रख लिए थे। ये देखिए, इन्हें पहनने के बाद हमें कोई पहचानेगा भी नहीं।
10: अरे वाह, देखा माँ, और आप कहती हैं सहदेव अभी छोटा है, इसने तो वो काम किया है जो हमारी बुद्धि में भी नहीं आया।
0: ये नकुल और सहदेव भले ही संसार में सबसे बुद्धिमान क्यों ना हो, पर रहेंगे तो सबसे छोटे ही ना। मेरे प्यारे पुत्र,
25: वर्णावत में क्या हुआ महाराज?
26: अधर्म हुआ है, अधर्म।
25: हमारे महाराज अपराधी है,
26: अपराधी है, अपराधी है।
25: हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे,
26: नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
27: इस जन समूह में कोई है ऐसा जो इस आक्रोश का कारण बता सके? कोई ऐसा जो ये बता सके कि महाराज ने कौन सा अधर्म किया है, कैसा अपराध किया है महाराज धृतराष्ट्र ने?
28: पांडवों की अकाल मृत्यु नहीं हुई है पितामह, वध हुआ है उनका, वध हुआ है।
13: अब यहाँ पांडवों की मौत की खबर से प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई। पर भीष्म को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सबके पीछे दुर्योधन का शैतानी दिमाग है, क्योंकि ऐसा षड्यंत्र पहली बार नहीं हुआ था। पर सच्चाई केवल विदुर को पता थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि पांडवों का भला इसी में है कि अभी वो कुछ समय तक चुप रहे, मतलब वनवास से पहले एक और वनवास। सुनते रहिए महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में लगी आग, बाइक भी जलकर हो गई राख। भोपतपुर में अज्ञात चोरों ने 50 लाख के संपत्ति की कर ली चोरी, पुलिस जांच में जुटी। चेतना सत्र में छात्रों को किया गया सम्मानित और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद तथा EVM और वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मंगलवार की सुबह माझा थाना क्षेत्र के लंगटू हत्ता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में रखी मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना वकील मियां के झोपड़ी में हुई, जहां सुबह अचानक शुरू हुई बारिश के बाद बिजली गड़गड़ाने लगी और देखते ही देखते आकाशीय बिजली इनके झोपड़ी पर गिर गई, जिससे आसपास के लोगों

0: अफरा तफरी मच गया और झोपड़ी में आग लग गई। पूरी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक झोपड़ी और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में रखे अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गए हैं। यह परिवार पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। घटना के बाद से अब पीड़ित परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं आग लगने की घटना के बाद से परिवार को काफी नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित सरकारी सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोपतिपुर गांव के रहने वाले सुनील चौबे के घर में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित कीमती कपड़े और नगदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। जानकारी मिलने के बाद परिवार घर पर पहुंचा, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त परिवार गोरखपुर में किसी का इलाज कराने के सिलसिले में गया हुआ था। घर खाली था और दोपहर में ही लोगों का कहना है कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह घटना कब कैसे हुई है इसको लेकर कुचायकोट थाना की पुलिस आवश्यक अनुसंधान कर रही है। हथुआ प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय बरी ईसर सह मध्य विद्यालय रेपुरा के परिसर में चेतना सत्र के दौरान अनुशासन, बेहतर उपस्थिति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षक रंजय कुमार पांडे ने अक्टूबर माह में भी चयनित छात्र छात्राओं के बीच हॉर्लिक्स का वितरण किया। इस पहल से हर माह बेहतर प्रदर्शन और अनुशासन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय बनाने पर जोर भी दी जा रही है। कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय बरीसर के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार तिवारी और मध्य विद्यालय रेपुरा के प्रधानाध्यापक केशव राम ने कहा कि विद्यार्थियों को इस तरह सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती है। इस दौरान दोनों विद्यालयों को जिले में आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के कोने कोने से आए फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखा और लिखित रूप में भी आवेदन दिया, जिनको सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों को आश्वस्त किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस गोपालगंज का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। सभी निर्वाचित मानकों के अनुरूप व्यवस्था का जायजा लिया गया और निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा, सीलिंग व्यवस्था एवं अन्य प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि सभी जांचों में स्थिति संतोषजनक पाई गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने पहाड़पुर सर्विस रोड पर छापेमारी करते हुए कुचायकोट क्षेत्र से 28 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में अर्जुन कुमार कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। यह कुचायकोट के पकड़ी गांव का रहने वाला और विश्वनाथ कुशवाहा का पुत्र बताया जा रहा है। इसकी एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के कुर्म टोला जलालपुर रोड में भी वाहन जांच करते हुए 10 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी एसपी कुमार बताया जा रहा है, जो विशंभरपुर थाना क्षेत्र के टोला सिपाया के दरोगा मुसहर का पुत्र है। इसकी भी मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा रात्रि कालीन रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, थावे एवं मीरगंज तक नियमित रात्रि बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य रात्रि के समय ट्रेन से गोपालगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि यात्रियों को अनावश्यक रूप से पैदल अथवा सुरक्षित साधनों से आवागमन न करना पड़े। यह सुविधा गोपालगंज पुलिस के द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने 30 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मठिया के पास कार्रवाई करते हुए अजय कुमार शाह को शराब के साथ पकड़ा। इसके दुकान से पुलिस ने शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 30 लीटर शराब बरामद की गई और इसके बाद अजय कुमार शाह पिता रामचंद्र शाह साकिन रघुनाथपुर थाना भोरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब को जब्त करते हुए अब इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इधर जिला मुख्यालय पर जनता दल यूनाइटेड द्वारा आशीर्वाद वाटिका मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम नीतीश संवाद जीविका के 20 साल बेमिसाल के ऐतिहासिक सफलता पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल के आवास पर जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने पुष्प माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता में पार्टी के सभी पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग रहा है, विशेषकर महिला प्रकोष्ठ एवं जीविका दीदियों का सहयोग रहा है। जिला अध्यक्ष ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री सुनील कुमार, विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रीता देवी, नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र कुमार चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के योगदान की सराहना की। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष को बधाई देने वाले पदाधिकारियों में मुख्य रूप से जिला महासचिव अखिलेश प्रसाद, जिला महासचिव संजय कुमार, जिला महासचिव विजेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता अभय पांडे, जिला सचिव दशरथ सिंह, बरौली नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद पटेल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार खान, बैकुंठपुर के प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिला सचिव संतोष कुमार दास, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय सहित दर्जनों पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम की सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी।
1: भोरे थाना की पुलिस ने 368 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के नंदपट्टी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए घूम रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। सदर SDM डॉक्टर प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में नगर थाना में दुर्गा पूजा पंडालों के अनुज्ञप्ति धारियों के साथ पुलिस की बैठक हुई। सभी पंडालों में CCTV और अग्निशमन यंत्र लगाने को निर्देशित किया गया। पंडाल में अलग एंट्री एग्जिट के साथ इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए। हाई टेंशन वायर से पर्याप्त दूरी और ढीले ढाले विद्युत तार नहीं रखने की हिदायत दिए गए। मुख्य मार्ग पर भंडारा लगाने पर रोक है। पंडाल के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। संकीर्ण रास्तों में पंडाल लगाने पर अग्निशमन वाहनों का रास्ता बाधित नहीं करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही शाम 6 बजे से रात 12-1 बजे तक टाउन क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण की तैयारी भी की गई है। इधर महावीरी अखाड़ा, दुर्गा पूजा और दशहरा इत्यादि को लेकर प्रशासन अलर्ट है। DMSP ने शांति समिति की बैठक कर सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाढ़ का पानी घटने के बाद संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। प्रभावित गांवों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता टीम की लगातार तैनाती की गई है। जल जनित और संक्रमण संबंधित बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षित पेयजल के इस्तेमाल और बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील भी की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलबनवा गांव के पास बस का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला जब बस पहुंची तो उसमें चढ़ने के दौरान अचानक बस से नीचे गिर गई, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच कर रही है। मृत महिला कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोंडवलिया गाँव के वाहिद मियाँ की 70 वर्षीय पत्नी कलमा खातून बताई जा रही है। ट्रैक्टर पर सवार एक किशोर अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के चक्के के चपेट में आ गया, जिससे किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामला जादवपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक भी जादवपुर के मसान थाना गांव के सुकट शाह का 16 वर्षीय पुत्र अमन प्रीत बताया जा रहा है। यह मंगलपुर पुल के पास ट्रैक्टर से जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है।
0: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में लगी आग, बाइक भी जलकर हो गई राख। भोपतपुर में अज्ञात चोरों ने 50 लाख के संपत्ति की कर ली चोरी, पुलिस जांच में जुटी। चेतना सत्र में छात्रों को किया गया सम्मानित और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद तथा ईवीएम और वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
5: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण एम.डी. फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी,

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्रगोकुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपाल।

0: ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद वाटर मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जल मार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाद खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग, जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के एसएमई विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
3: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
9: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
8: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
9: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
8: कहाँ?
9: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
10: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
11: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
10: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
11: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
10: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
11: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 8023-3586 या 95-9997-27-982।
12: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
12: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
12: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: यहाँ बैठा शेर की पपिया ले रहा है, जाके खेत में बापू के साथ हाथ नहीं बटा सकता।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ऑनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।

0: आइलैंड में नहीं राजगीर में होगा विश्व कप कैडेट और जूनियर पुरुष तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी सेवा कार्यों से देश और विदेश में सम्मान अर्जित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी संबोधन होगा। पटना समेत राज्य के कई जिलों में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पटना में मिलर हाई स्कूल मैदान में सुबह 9:30 बजे संकल्प सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। सभा के बाद सेवा ज्योति चौक से तारामंडल, गांधी मैदान, इस्कॉन टेम्पल और आर ब्लॉक होते हुए यात्रा निकाली जाएगी। राज्य के अन्य जिलों में भी यात्राओं और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बक्सर में किला मैदान से गोलंबर तक मशाल और बाइक यात्रा निकलेगी, जबकि सिवान में अंबेडकर पार्क से बबुनिया मोड़ तक यात्रा प्रस्तावित है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाना, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में सेवा के रंग राष्ट्र के संग अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत रंगोली और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए गए सेवा, समर्पण, सुशासन और विकास कार्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर मिथिला, मगध, चंपारण सहित राज्य के विभिन्न भागों के पारंपरिक खानपान और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसके तहत आज सुनिए देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार से एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग तक के सफर पर आधारित यह रिपोर्ट।
2: 5 दशकों तक भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब केवल इसरो था। साल 2020 के सुधारों ने इस विशिष्टता को समाप्त करते हुए इन स्पेस की स्थापना की एक स्वतंत्र संस्था, जिसे निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने, बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भविष्य में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा।
3: भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं।
2: साल 2020 के बाद वर्ष 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति ने अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी श्रृंखला को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया। इसमें प्रक्षेपण यान और उपग्रहों से लेकर ग्राउंड सिस्टम और डाउनस्ट्रीम सेवाएं तक शामिल थी। इसका असर तेजी से दिखाई दिया। वर्ष 2014 में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का केवल एक स्टार्टअप था। 2026 तक लगभग 440 पंजीकृत स्पेस टेक स्टार्टअप हो गए और निजी निवेश 18 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया। बिहार के नागरिकों ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का स्वागत किया है।
4: मैं अंकित कुमार पांडे रोहतास जिला से बोल रहा हूँ। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आज जिस तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है वह देश के लिए गर्व की बात है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नई तकनीक और नवाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने से अंतरिक्ष के क्षेत्र के विकास को नई गति मिली।
5: मेरा नाम श्याम नंदन है ना, मैं सारण जिले का निवासी हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ स्टार्ट अगर यहाँ से करते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं या फिर कोई अपना एक ऑफिस तक खोलते हैं, उसका भी एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एक बूम आएगा, जिसके लिए हमें हमारे प्रदेश में स्टार्टअप्स को लॉन्च करना बहुत ही जरूरी है।
2: इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 18 जुलाई 2026 को सामने आया, जब स्काई रूट एयरो स्पेस का विक्रम 1 श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ और अपने पहले ही प्रयास में कक्षा तक पहुंच गया। ये कक्षा में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट बना। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद की 4 स्नातक सीटों और 4 शिक्षक सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 164 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 98 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 66 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। सबसे अधिक 40 उम्मीदवार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, वहीं सबसे कम 11 उम्मीदवार तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना स्नातक से 22, तिरहुत स्नातक से 20 और कोसी स्नातक से 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 22, सारण शिक्षक से 19, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा और 27 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों को पहली किस्त की राशि का वितरण करेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच दूसरे चरण के तहत 12 अक्टूबर को अनुग्रहित राहत राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों से बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा सुपौल से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक ट्रफ लाइन बिहार से गुजर रही है। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। विभाग ने आज राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और बक्सर समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ

मंत्री ने अधिकारियों और कर्मियों को मौजा स्तर पर शिविर लगाकर रैयतों की समस्याओं का समाधान करने को कहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण महज जमीन की नापी नहीं बल्कि रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा और शुद्ध भूमि अभिलेख तैयार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। थाईलैंड में प्रस्तावित विश्व कप कैडेट और जूनियर पुरुष तलवारबाजी प्रतियोगिता अब राजगीर में आयोजित होगी। थाईलैंड में प्रतियोगिता का आयोजन रद्द होने के बाद इसकी मेजबानी बिहार को मिली है। फाइल वर्क की यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगले वर्ष 22 से 24 जनवरी तक राजगीर में होगी। इसमें कैडेट और जूनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि राजगीर इससे पहले हॉकी और सेपक टाकरा समेत कई बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2030 के बाद मजबूरी में मजदूरी के लिए बिहार से कोई बाहर नहीं जाएगा। हिंदुस्तान ने लिखा है, कड़े फैसलों से बढ़ता गया मोदी का कद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, यूजीसी के सख्त नियम के बावजूद दो बड़े विश्वविद्यालयों में व्यवस्था ठप। दैनिक जागरण लिखता है, हिरासत में लिए गए राहुल प्रियंका फिर रिहा। आज अखबार की प्रमुख खबर है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में बेगूसराय का युवक गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। पटना और अन्य जिलों में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का होगा आयोजन। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आज की जा रही है नामांकन पत्रों की जांच। और थाईलैंड में नहीं राजगीर में होगा विश्व कप कैडेट और जूनियर पुरुष तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक

0: एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
7: हेलो जी, गुड मॉर्निंग।
8: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: जी भारती जी, या मनोरमा जी?
8: जी मैं मनोरमा
7: जी, एहसास मास्टर ग्राम धना और अवसर से।
8: कैसे हैं आप?
7: ठीक हैं, अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं?
8: जी हम भी बढ़िया
7: हैं। कई दिनों के बाद फोन कर रहा हूँ, इधर छोड़ दिए थे हम कार, फोन कर रहे हैं। काली विज्ञापन तो हम लोग सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे, थोड़ा सा काली विज्ञापन सुन रहे हैं। और सब बताइए, कैसा मौसम है आपकी तरफ?
8: जी मौसम तो बता दो कि धूप निकला हुआ
7: है। जी हाँ, धूप हम लोग की तरफ भी बहुत निकल रहा है। दशहरा की तैयारी हो रहा है ना?
8: जी जी, अब तो दशहरा भी आने वाला है।
7: चलिए ठीक है, यार वो उसमें जुड़ा जाएगा 12 बजे से।
8: जी बिल्कुल।
7: मैडम जो गाना सुना दीजिए, नगीना मूवी का।
8: जी, और गाने की बोल।
7: आज कल याद कुछ और रहता नहीं।

0: और सबसे पहले आपको सुनना चाहता हूँ और भारती जी जी को भी और जितने रेडियो दिन भी मैं सभी श्रोताओं को और हम लोग सुनेंगे रोशन ट्रेलर में धनाव से।
1: बिल्कुल मैं बता दूँ आप बहुत ही अच्छा गाना गा लेते हैं।
0: अरे कभी हम लोग का यही काम है दिन भर रेडियो सुनना सुनना क्या किया था गुनगुनाना।
1: जी जी बहुत ही अच्छा लगा
0: जी। आज बच जाएगा ना शाम में। जी ठीक है तब पहला कॉल था ना मैडम।
1: जी जी आपका पहला ही कॉल था
0: जी। चलिए इंतजार रहेगा 12 बजे फिर मिलेंगे।
1: ओके जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: चलिए सबके साथ रेडियो रिंग जिम 95.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
0: जी बोलिए,
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: जी मैम, मेरा नाम अशोक सोंधिया है।
1: ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी?
0: मैं राजगढ़ से बोल रहा हूँ। राजगढ़? राजगढ़।
1: अच्छा, ये कहाँ पड़ता है?
0: जिला राजगढ़ पड़ता है मैडम।
1: अच्छा जी, तो और अपना नाम क्या बताया है?
0: अशोक सोंधिया।
1: अच्छा जी, तो क्या आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
0: जी मैम।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगिम का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है मैम, तभी तो लगाया ही।
1: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: क्या तुम्हें पता है
1: हर ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम। हाँ मैडम, किसी को सुनाना भी चाहते हैं। हम भी सुनना।
1: अच्छा, तो
0: हमारे सुनील साहब जी है।
1: अच्छा जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: हाँ करो मैम
1: जी। रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
7: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
7: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
7: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up.
13: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: आपका भी स्वागत है कॉल उठाने के लिए, बहुत देर लगा दी उठाने के लिए।
13: जी जी, कॉल नंबर शो नहीं कर रहा था।
14: अच्छा अच्छा, और आप कैसी हैं?
13: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और
13: जी, तो आप दिलीप जी बोल रहे हैं?
14: हाँ जी जी बोल रहा हूँ।
13: जी जी, आप
14: इसलिए तो कहा कि रानी मुखर्जी भी देखते हैं कि आवाज पहचानती हूँ।
13: जी जी, आपने मेरा इतना मतलब नाम रख दिया कि आप देखने से सब कोई कह रहा है। जी
14: क्या करें, बस आप लोग से जुड़ाव बना हुआ है, हम लोग आज से नहीं कई साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को आवाजें होती है और रेडियो लिसनर की प्यार मोहब्बत होती है, जो नींद खुलते ही क्या होता है कि आकर्षित करता है कि चलिए हम लोग जुड़ जाएं और सभी दोस्तों के बीच सम्मिलित होकर उन लोगों को आवाजों को सुना जाए, अपनी भी आवाजें रखा जाए, जिसे बहुत आनंद मिलती है।
13: जी
14: आज हमारी ये फरमाइश थी, जानती है फरमाइश क्या? है
0: जी बता दीजिए।
14: आज की फरमाइश है कि हमारे रानी मुखर्जी अपने मन पसंद से जो है हमारे लिए गाना अच्छा था भोजपुरी गाने को भी सुनाए और सभी दोस्तों को भी सुनाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बजाइएगा तो गलत बजाइएगा, इतना तो नहीं है कि आपकी पसंद हमारी पसंद ना मिले तो ये हो ही नहीं सकता। जो भी गाना पसंद से अपनी चलाइएगा तो हमको भी पसंद आएगा और लिसनर को लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं तो गाना फरमा सकता था लेकिन बस आज आपके ऊपर डाला हूँ।
0: अच्छा जी।
14: हाँ, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाना चलाइएगा। आप जानते हैं कैसे गाना हम लोग सुनते हैं, उसी तरीके से चला सकिएगा आप।
0: कोशिश करेंगे। भारती जी भी हैं, काम कर रही हैं अपना।
14: तो आज मैं काफी दिनों से आपसे बात नहीं हो रही थी ना, आज देखते हैं हो सकता है कि रानी मुखर्जी जी से बात हो जाए।
0: आपने मेरा नाम ही
14: क्या करें, जिसकी आवाज ही उनकी जैसा सम्मिलित है और मेरे को लगता है कि रानी मुखर्जी जैसा आपका भी गेहुआ रंग होगा।
0: अच्छा जी।
14: तेजना से इनकी जो बातें विचार है उनको जांच पर चलना पा रहा है।
0: और भी लिसनर लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि दिनेश जी नाम रखे हैं रानी मुखर्जी, तो हम लोग भी बोलेंगे लो, तो वो लोग भी बोलते हैं।
14: बोल अच्छी ये बताइए, बोलने में ऐसे करने में कोई गलत तो कोई इंसान बोलता नहीं है, ये आपका जज्बातों के ऊपर आपकी आवाज़ की वजह से आपको रानी मुखर्जी नाम रखा गया है।
0: मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे आपने इतना मुझे प्यार दिया और आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी प्रोग्राम कर रही हूँ धीरे धीरे।
14: सब लोग देखिए सीख के नहीं आता है, यही तो सीखना पड़ता है। फिर कभी बात होगा और भी कोई लाइन में लगा होगा तो प्यार करते होंगे, तो फिर कभी बात होगी हमारी आपकी, तो आपको भी नमस्कार, गाँव को भी नमस्कार। तो आइए
0: जी नमस्कार।
14: तो जी जी,
0: तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। सुनते रहिए,
14: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: युवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 से 1:30 के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up. Hello. जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
9: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी नमस्ते।
11: जी नमस्ते,
10: क्या हाल समाचार?
11: जी सब ठीक बा, अपन बताए।
10: बढ़िया बा,
11: वैसे नाम बता दिए अपन।
10: हम पचखरा से भोला जी बोलते हैं।
11: जी जी, और सब बताए, रहो ठीक बा? नहीं हूँ।
10: भारती जी बोलते
11: नहीं?
10: भारती जी बोलते की मनोरमा जी।
11: मनोरमा,
10: मनोरमा जी भेज भेंट भर हुआ जी। भारती जी शायद अधिकार से भेंट होगा।
11: और बताए, खाना ना बनी?
10: सब कुछ हो गया।
11: वैसे कौन सा गाना सुने? आज
10: गाना सुने साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल में करार है। गाना तो देखी, गाना तो गाओ तो नहीं, लेकिन गाना देखे अभी सुने की इच्छा कर, गाओ की इच्छा ना करे ला।
11: अच्छा,
10: कोई बात नहीं। और गाना के सब कोई
11: चलिए, तो फिर अब गाना हम प्ले करते नहीं?
10: जी कल बजे
11: प्ले करते हैं। सुन रहे हैं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम में।
0: आपको धन्यवाद मैडम।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: कुमार शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है, ठंडे मौसम का जायका ले रहे हैं।
1: जी जी, तो कुमार शंकर जी के आप पहली बार हेलमेटेशन कॉल किया?
0: नहीं, मैं तो कई बार कॉल कर चुका हूँ।
1: तो ऐसे लग रहा है मुझे आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: नहीं नहीं, आप कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं मनोरमा।
0: हाँ, तो आपसे मेरे ख्याल से एक बार पहले बात हुई होगी, क्योंकि मैं किसी का नाम पूछता ही नहीं हूँ। तो आपने इस आसन रखा कि मुझे नाम पूछना पड़ रहा है। हाँ, बातें कर लेता हूँ, फरमाइश कर लेता हूँ। अभी मैंने किसी से नाम पूछा ही नहीं आज तक।
1: कोई बात नहीं है। आज तो कौन सा गाना सुनिए?
0: हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हरियाली और आस्था, और गाने का बोल भी यही है हरियाली और आस्था।
1: क्या आप मुझे गा के बताइएगा?
0: वो गाना तो मैं भूल गया हूँ, बस ये चलते चलते मुझे ध्यान आया, हमने कहा इस गाने का फरमाइश करना है, हरियाली और आस्था पाकिस्तान। और हमको तो गाना गाने आता ही नहीं है, हमने कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया गाना गाने में, और डेडिकेट रहे होता है सभी लोगों को।
1: एक बार और गाने के बोल बता दीजिएगा तो बेहतर होगा।
0: हरियाली, फिल्म का नाम हरियाली और आस्था, टाइटल सॉन्ग है।
1: चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: जी जी, धन्यवाद।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070 32042 पे।
11: प्रसाद क्लिनिक,
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
12: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो रेडियो रिमझिम।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जय भवानी।
13: जय भवानी।
14: कहीं अपन हाल चाल?
13: जी हमारा हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताई रवा कैसन बानी?
14: ठीक बा भवानी, हमारा हाल चाल ठीक बा। रहुए तो पूजा करी ले, रहुए तो इबादत करी ले, तो हमरा के गाना सुने के बा। हम तो शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले, आज से बहुत दिन हो गई, तो हमरा सुने के बा शोभा गुट्टो के गावल तो सूरजमुख होना जाइबे बिंदिया बिंदिया धूमिल हो जाबे।
13: जी
14: शोभा गुट्टो का गाया हुआ ये राग इस पर आधारित दादरा पर, राग दादरा है
13: जी जी।
14: इस गाने को गाया है शोभा गुट्टो ने, सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धूमिल हो जाबे।
13: वैसे कहाँ से बोलता
14: है? हम बोला तानी देवता ग्राम भनवी से, जामो बाजार जिला सीमान।
13: अच्छा,
14: बद्री नारायण मुनि।
13: जी जी, तो रुआ का हेलो मैच में पहली बार कॉल के लिए बानी?
14: ना तो 3-4 बार कर चुके नहीं, 4 बार।
13: अच्छा,
14: हम अपन गाना फरमाइश करी ले, यानी हम सुनी ना सुनी लोग सुनेला, फरमाइश कर दे लोग सुनी। सुनी हम सुनी ना सुनी कोनो बात नहीं छे।
15: जी जी बहुत अच्छा लागल फरमाइश करे नी तो
14: हम तो ज्यादातर शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले ज्यादातर लोक धुन पर आधारित भी गाना सुनी ले जैसे राजस्थानी हुआ बंगाली हुआ पंजाबी हुआ ये सब गाना जो लोक धुन पर आधारित गाना बा वो सुनी ले
15: अच्छा लागेला गाना लेकिन ये सब
14: सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धुमिल हो जाबे ये शोभा गुट्टो का गाया हुआ गाना है बहुत तरह का गाना है शोभा गुट्टो का गाया हुआ जो सुर समृद्धि है।
15: जी जी और ये गाना आप किसी को सुनवाइएगा भी
14: हम तो जितना लिसनर है हमारे भाई बहन है हमारे जितने रेडियो रिंजिम के श्रोता है सबको मैं सुनवाऊंगा और मैं भी खुद सुनूंगा और सबको ये गाना जो है ना शास्त्रीय राग पर आधारित सबको गाना ये अच्छा नहीं लगता जो उसको समझ रखता है जो उसको ज्ञान है जो उसको बुद्धि है शास्त्रीय रागों पर उसी को समझ में आएगा।
15: जी जी चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
14: ठीक है जी कब सुनेंगे आप
15: ये गाना आपका कल बजेगा।
14: ठीक है शाम को 5 बजे
15: जी जी 5 से 7 के बीच।
14: ठीक है जी धन्यवाद
15: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
14: जय भवानी।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते,
1: क्या हाल है
0: जी? ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
1: स्लो ही बोलते हैं।
0: नाम बता दीजिए अपना। नंदनी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? आपको कौन सा गाना सुनिएगा? कौन सा?
1: मारे
0: मारे अखियां। ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगी? ओके नंदनी जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी, S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up.
10: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
12: नमस्ते, मैं कैसी हूँ?
11: जी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
12: मैं ठीक हूँ।
11: आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
12: मैं भी ठीक हूँ, आप क्या है आवाज?
11: जी जी आ रही है, अपना नाम बता दीजिए।
12: मेरा नाम तृप्ति है।
11: तृप्ति
12: जी,
11: तृप्ति जी कहाँ से बोल रही हैं?
12: मैं राधा गोपालगंज से।
11: अच्छा जी, तो तृप्ति जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
12: चला चला निजाहो से दिल चला, जो भी मैं प्यार करता हूँ।
11: तो क्या ये आप मुझे गा के बता सकती हैं?

0: जी, गाना तो बहुत ही अच्छे गा लेती हैं आप।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। और ये गाना जो बताएंगे वो आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: मेरी सिस्टर स्टेडी है, सिंगल है, और बाकी जो सभी सुन रहे हैं उनसे भी को और भारती मैम को।
0: ओके दीप्ति जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिंगिंग 90.4 FM
1: जी। सुना
0: जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: पवन जी बोल रहे हैं।
0: और कहाँ से?
1: सुबह से।
0: तो कैसे हैं पवन जी?
1: ठीक है, अपना सुनाइए। आप भी ठीक है ना?
0: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो पवन जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: उस लड़की से दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
0: गाना तो काफी खूबसूरत है
1: जी।
0: क्या ये गाना आप मुझे गाके बताएंगे?
1: पूरा याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं है, आप बस दो लाइन गाना है आपको।
1: जी, लड़की से दिल आया है जो जिसने मुझे सताया है। मेन बात है कि हम लोग गाना नहीं गाते हैं ना, इसीलिए।
0: चलिए चलिए, कोई बात नहीं है,
1: अगला बार याद तो कर जरूर सुनाएंगे आपको।
0: जी जी बिल्कुल, हम वेट करेंगे आपका।
1: जी जी।
0: और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, पूरा गोपालगंज जिला लोग आपको भी। दोस्त है, इरफान है, अर्जुन है, चंदन है, सुमंत है, बॉबी है।
0: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हाँ, गोपाल मंदिर गेट के सामने।
0: अच्छा जी, चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: अस्सलाम वालेकुम मैम।
8: जी वालेकुम अस्सलाम।
7: हाँ जाकिर हुसैन,
8: जी जाकिर जी, कैसे हैं?
7: हम ठीक है मैम, अपना बताइए।
8: जी हम भी बढ़िया।
7: अरे मैम थक गए थे, पूरा कॉल लगा लगा कर पूरा अभी थक गए हैं।
8: अच्छा जी।
7: हाँ बहुत ओवर से कॉल लगा रहे हैं।
8: बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना?
7: हाँ मैम बहुत मेहनत कर, सही बात है ना, मैं मेहनत हमको अच्छा लगता है, इसी सब मेहनत करते हैं।
8: अच्छा जी, चलिए हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना
7: सुनना चाहते हैं।
8: जी बिल्कुल, बता दीजिए।
7: आए और अब्बा बिल जलता है, झूठे सबे पिलाते हैं, प्यार बात वाले देखो प्यार के
8: पिलाते हैं। अच्छा किसी गाना गा के बताइएगा मुझे।
7: थोड़ा बहुत याद है
8: बोला ही।

0: गाना सुनना चाहते हैं
1: जी जाकिर जी, और ये गाना आप डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ मैम, जो अपना दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रिव्यू के जितना परिवार है उन लोगों को, और सुखी आलम, मेराज आलम, यूसुफ अली, मोहम्मद कूप, उसके बाद जितेश शर्मा, बस मुकेश शर्मा, रविंदर शर्मा, बस इन्हीं लोगों को सुनाना चाहते हैं।
1: ओके जाकिर जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं जादवपुर से बोल रहे हैं, गोपालगंज।
1: गोपालगंज जादवपुर?
0: हाँ हाँ, गोपालगंज जादवपुर।
1: अच्छा, ये जाकिर जी, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ओके मैम।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: एफएम बोलते हैं पठान पटी से।
0: जी जी, कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अपन बताइए।
0: हमरो ठीक बा, बड़ा ढेर दिन पर मिलल बानी।
1: बहुत दिन से मिलल बानी, फोन करके टाइम नहीं मिलल, फोन कहाँ कर रही
0: है। अच्छा, इतना बिजी बानी?
1: आज भोर पर अभी आज तो कोई है रिचार्ज कर तब या तो के फोन लगता
0: हूं। अच्छा, वो हम तो कहीं की हमनी से किसी आई बानी का कि फोन हमें की करत
1: तो वाला से किसी आई बानी कहीं का है। दो दो अटवा बीत गए तो और ना फोन था तो
0: नाश्ता पानी सब हो जाए। जी बताए की आज के का बार फरमाइश
1: मसूरी गाना बाबा मकई मकई सत्य चीट के पथल दिन डाल कर डॉक्टर से सत्य चीट के पथल दिन डाल
0: के बता सकते नहीं जाना
1: ना मैडम नहीं थोड़ा सा अच्छा लग रहा था जी बता दी।
0: अच्छा ठीक, मैं पूरा कोशिश रही की रब गाना ये बाजी और सुनाए की विचार तो नहीं
1: और सुनाए रानी बोले बड़े रखो से जितना लोग सुनी था सब कुछ सुनी।
0: अच्छा चलिए,
1: ऐसे रहो से बतिया के तो बोला आज भी बहुत ही अच्छा लगे ला दोस्त की तो बात हो दिंदा।
0: जी जी, हमके भी बहुत ही अच्छा लगे दोस्त से बात करके।
1: सही बात, अगर रिकॉर्डिंग की बात ना हो हर बात तो बात कर
0: ली
1: से बात करो बहुत ही अच्छा लगा सुकून
0: मिलेगा। चलिए तब फोन लगाने बात करके हमें बहुत अच्छा लगे। चलिए तो एक ही साथ गाना प्ले कर रही।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है
10: जी? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है? आप बताइए, आप कैसी हैं?
11: मैं भी ठीक हूँ। खाना हो गया?
10: हाँ जी हो गया। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
11: मैं पानीपत से बोल रही हूँ।
10: और आपका नाम?
11: जोया।
10: जोया जी, तो और बताइए कैसी हैं?
11: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए?
10: मैं भी बढ़िया हूँ।
11: घर में सब कोई ठीक है?
10: जी जी, सब कोई बढ़िया है। और आपके घर में?
11: मेरे घर में भी सब कोई ठीक है। मेरे घर में तो मैं एक मेरा लड़का है।
10: अच्छा जी, तो आपके बाबू छोटे वाले कैसे हैं?
11: ओ ठीक है। अच्छा आप मोनरमा मैम बोल रही है ना?
10: जी।
11: ओ मैडम मेरा गाना नहीं सुनी।
10: ओहो, गाना तो आपका बज गया होगा।
11: हाँ
10: जी, तो क्या आपको टाइमिंग नहीं पता कितना बजे?
11: नहीं पता है। और एक बात बोलूं, मैं मैसेज वाला भी कल देखी और सुनी।
10: अच्छा, तो मैसेज वाला आप जब मैसेज डालती हैं उसी टाइम आपका गाना बज जाएगा, और जो इसमें बात कर रही है ना,
11: हाँ,
10: तो इसमें रिकॉर्डिंग होता है और ये गाना आपका अगले दिन चलता है।
11: ओ, तो मैं वो मैसेज वाला नंबर नहीं लिख पाई।
10: अच्छा जी, तो रेडियो पे बताया जाता है नंबर, आप नोट कर लीजिएगा।
11: हाँ, एक तो नंबर नोट कर ली, वो जो 77-72 वाला है जो।
10: जी जी।
11: हाँ, तो उसमें कॉल लगा रही थी लेकिन कॉल नहीं उठा, तो फिर छोड़ दी मैं, रोने लगा बाबू तो।
10: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
11: आज गाना सुनेंगे जो नहीं है, दैया दैया दैया रे।
10: जी जी,
11: वही वाला।
10: ओके, और
11: मैडम एक बात बोलूं मैम?
10: जी बोलिए।
11: मसाला आपको नजर ना लगे, मैंने सच में, आप लोग दोनों, आप दोनों बहन है क्या?
10: नहीं।
11: आप दोनों का आवाज इतना मस्त लगता है और सेम टू सेम एक ही जैसा है।
10: अच्छा।
11: हाँ, असल में मैं बोल रही थी कि अल्लाह करे कि नजर न लगे, मैंने दोनों मैम का इतना मस्त आवाज है ना कि क्या नहीं कहने का, बहुत प्यारा आवाज लगता है। और मेरे को, आप किसी से भी बातें करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बातें बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
10: जी जी, और आप कॉल करती है ना तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बोलती है ना जी कि पानीपत से बोल रही हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि आप जया जी बोल रही हैं। मैं भी आपको पहचान गई हूँ, आप बात करते रहेंगी।
11: हाँ ठीक है मैम।
10: जी, और आपका कॉल मैं बता दूं कि आज भी बज सकता है, क्योंकि पिछले बार जो कॉल आप रिकॉर्ड कराई थी ना,
11: हाँ,
10: वो कॉल मेरे पास है, तो आज चलेगा चलेगा शाम से 5-7 के बीच।
11: ओ तो ठीक है, मैं आज सुन लूंगी लग रहा है।
10: जी जी बिल्कुल। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: थैंक यू मैम।
10: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
11: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: राम राम दाव गुना जला।
1: जी जी, नाम बता दिया अपन।
0: गाना सुनना भाई।
1: जी बता दी।
0: नदिया के पास जला रे बटलिया, कौन दिशा में।
1: जी जी, और गाना कैसे सुनाने की भी चाहता नहीं
0: आपको। सुना जाऊँ मैं तो हिंदुस्तान गाना।
1: अच्छा जी है? जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप।
0: गुना से बोल रहे हैं भाई।
1: और आपका नाम।
0: राम नन्ना हमारा।
1: अच्छा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
7: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: हेलो।
13: हाँ जी।
14: हाँ जी योगेश जी आंगड़े दोनों तरफ छत्तीसगढ़ से।
13: जी योगेश जी कैसे हैं आप?
14: बढ़िया है, अच्छे हैं।
13: तो क्या हो रहा था?
14: अभी तो घर में है, खेत से आया हूँ।
13: अच्छा जी, तो योगेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: दोनों तरफ छत्तीसगढ़।
13: ओके।
14: गाना सुना देंगे फिल्म हिमालय की गोद से चांद से महबूबा हो मेरी तुम।
13: जी एक बार और बता दीजिए।
14: फिल्म है रानी का बोल है चांद से महबूबा हो मेरी तुम और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।
13: तो ये गेस जी ये गाना आप मुझे जाके बताइएगा।
14: कोशिश कर सकते हैं दो लाइन।
13: दो लाइन ही गाना
14: है आपको। फिल्म का नाम तो सुन लिया ना?
13: जी जी।
14: हाँ तो गीत के जो बोल है चांद सी महबूबा हो मेरी तुम ऐसा मैंने सोचा ना था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा ना था।
13: जी जी। और गाना शेयर भी करिएगा।
14: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है और सब साथी।
13: चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
14: धन्यवाद।
13: चलिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
15: चांद

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल चाल बेटे?
1: जी हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताए रहो कैसे बानी?
0: बढ़िया बानी हम, विकास कुमार
1: जी। विकास जी
0: पिंतापुर से।
1: जी जी, तो क्या होता थे?
0: क्या होता थे, रोजा से टाइम निकाल करके बस रोजा लगा फोन धरा होता रही है कंपनी में है नो।
1: तो हमको पता बाकी रहुआ ड्यूटी में होके।
0: सब और सब बताए?
1: जी सब बढ़िया बारह दुआ से।
0: अच्छा कैसा बानी रहू?
1: जी हम ठीक बानी एकदम।
0: अच्छा मस्त बानी एकदम ना?
1: बिल्कुल
0: सही सही बटे, माता रानी के कृपा से सही रहे एकदम।
1: रहुआ बताए की रहुआ कैसा बानी?
0: मनियो के बढ़िया बानी सन जी, बस काम उम चलता था बढ़िया बटे एकदम।
1: चलिए तो फिर कौन सा गाना सुने?
0: आज गाना सुने हम अनुराधा पटवाल का छठ के गाना। गाना सुन
1: कौन सा बता दे?
0: गाना गाना कौन बजा दे हम अनुराधा पटवाल के?
1: अच्छा विकास जी गाना क्योंकि सुनवाए के चाहता नहीं।
0: सबसे पहले आपके
1: थैंक यू,
0: आपके आपके घर में मैंने आपके मम्मी पापा जो भी मैंने सुनने वाले हुई है चाहे जितना रेडियो रेडियम सुनने वाले हैं सबको।
1: अच्छा
0: अपने मम्मी पापा के भी?
1: जी जी। तो चलिए फिर लाओ गाना हम प्ले करता नहीं।
0: अच्छा ठीक बटे ओके। नमस्ते
1: नमस्ते, सुना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029994911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
10: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके, और ऐसा ना हो कि आप गाने की फरमाइश तो करें लेकिन नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश को नहीं सुनाया जा सके। तो आप लोग क्लियर, हम आप सभी से बताते हैं, हर रोज़ विनती करते हैं कि आप पुराने गाने की फरमाइश के साथ जुड़े, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। और हाँ, आप जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो एक ट्रिक बताता हूँ। एक बार में पूरे बातें टाइप करके सेंड करें हमारे नंबर पे और अपना मैसेज वैसे ही छोड़ दें। वैसे छोड़ते हैं तो आपके नंबर बहुत जल्दी आएगी। अगर बार बार आप मैसेज करेंगे तो आपके नंबर में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि हम जैसे जैसे मैसेज पहुंचे हुए रहते हैं वैसे वैसे गाने के फरमाइश को प्ले करने की कोशिश करते हैं। आप इधर उधर करेंगे तो आपकी बारी थोड़ी देरी से आ सकती है। तो यदि गाने सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनना चाहते हैं तो एक बार में पूरे मैसेज में अपनी विचार रखें और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे सेंड करें और अपने को स्थिर रखें। आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए, सुनाना है आपको, सगीर जी को और रोशनी जी, वीरेंद्र भैया, निशा जी और उमा शंकर जी, समीर भाई को और सभी दोस्तों को सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ की जाएगी। और आगे मैसेज पहुँचे हुए, हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, मुझे एक गाना सुना दीजिए, फिल्म एक दूजे के लिए, गाने का बोल है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बुलेट चौधरी जी बढ़िया थाना क्षेत्र 3 फेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है तुम्हें देखने को तरसती हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने के फरमाइश के साथ जुड़ना है। ये बातें हम आप सभी के बीच हर रोज़ हर बार हर दिन में मैं बताता हूँ, तो आप लोग ये इस पर ध्यान दें और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। फिलहाल दिलीप जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MZM 94.4 FM पे दिलीप जी की फरमाइश।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें टाइप करना है और हमारे नंबर पे भेजना है। जैसे आपकी मैसेज हमारे पास पहुँचेगी वैसे आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम बता दें पूरी करेंगे नौशाद जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज देख लिया जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर जी मुझे भी सॉन्ग सुनना है। ईशु फ्रॉम झिरवा से जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कौन सा सॉन्ग सुनना है ये भी तो बताएं, तभी तो आपकी फरमाइश हम सुना पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, लेकिन आगे कुछ अता पता नहीं है तो आप अपना परिचय दें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हम भी SMS फरमाइश में जुड़ चुके हैं और हमें भी गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फ़िलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात की खामोशी में जब रेडियो की आवाज़ आती है, सोनू सर के शो में दोस्ती की महफिल सज जाती है। SMS फरमाइश का ये अंदाज बड़ा प्यारा लगता है, हर रोज़ हर दोस्त का नाम सुनकर दिल को सहारा मिलता है। ना कोई मतलब ना कोई हिसाब, बस दोस्ती का प्यार रहे। रेडियो रिमझिम की महफिल यूं ही हर रात गुलजार रहे। सोनू सर की आवाज़ और दोस्तों का साथ यही तो बनाता है हर रात को खास। दुआ है ये दोस्ती यूं ही मुस्कुराती रहे, रेडियो रिमझिम की महफिल हर दिल को खुशियां सुनाती रहे। काफ़ी प्यारी लाइन। और राघव जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं भैया, गाना का बोल है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फरीदा बंगरा से जुड़ी है तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर क्या हाल है, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम भी नहीं लिखे हुए कि आप ओ अलीशा महिरा गोपालगंज से जुड़ी हैं, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, आपकी वो फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि बिल्कुल वेरी नाइस सॉन्ग, दिल से थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और जी बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। झिरवा से मैसेज करती हैं ईशु। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नौशाद जी के गाने प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यदि आप भी इससे जुड़े हुए हैं तो बने रहे, एक एक करके फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू सुप प्यार में ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे एक गाना सुनना है प्रोफेसर फिल्म से गाने का, बोले हमारे गांव कोई आएगा प्यार की डोर में बंध जाएगा। ये गाना मैं आपको तथा रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को सुनाना चाहता हूँ। यह फिल्म मैं 1962 में देखा था। इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। फिलहाल हम जो पहले से मैसेज किए हुए श्रोतागण और अपने गाने को लेकर इंतज़ार में बैठे हैं, उनकी भी मैसेज हमारे पास पहुँची है, तो उनकी फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत अच्छा सोच चल रहा है, और इस मैसेज को करते हैं आलिशा माहिरा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भैया गाना सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं तो हमें एक आज रोमांटिक सॉन्ग सुना दे। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में फ्रॉम खकरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से वीरेंद्र गुप्ता भैया जी जुड़े हुए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा नाम संदीप कुमार, घर खास परसौनी। तो बिल्कुल संदीप जी, आपकी मैसेज हमारे पास बहुत पहले पहुँची है, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, आप सब्र करें। आगे बढ़ते हैं, हम अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं बुलेट चौधरी जी की फरमाइश रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सब रेडियो 98.4 FM पे। और आगे मिसेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और हमारे पास देखे तो इस समय उतना ही है जितना हमें मिलता है हर रोज। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश भी प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश करती हैं रोशनी मानिकपुर से और गाने का बोल देती हैं, तुम भी देखने को तरसती है ये आँखें, ओल्ड सॉन्ग है। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 98.4 FM पे।

तभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रामचिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब ओल्ड इज गोल्ड। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि दिल से थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रामचिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय क्या हाल है, तो बिल्कुल बढ़िया मैसेज करती हैं निशा डुमड़िया से। और आगे मैसेज पहुंचे हुए हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं मनीष रजक फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने का बोल देते हैं हम अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रामचिम 94.4 FM पे।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710392 या 9765065750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछिम 90.4 FM पे। और आगे मैसेज पहुंचे हुए कई और आगे बढ़ते पहले गाने वाले मैसेज हम बता दें किनकी है और किनकी फरमाइश प्ले होगी। तो इस मैसेज को पहुंचाने वाले श्रोता आलिशा माहिरा गोपालगंज से हैं और आगे इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। खत में लिखूं पर तेरा पता मालूम नहीं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि बिल्कुल मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना प्यार करता है, ऐसे तो कितना भी यकीन दिलाओ तो झूठा ही लगता है। वैसे नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ठीक बात है, अपने साहिबा से अल्टीमेटिव प्यार करना अनलिमिटेड प्यार करना चाहिए। अच्छा सॉन्ग, पर मेरा सॉन्ग बजा दे भाई, देखिए ये जनाब क्या कहते हैं। बिल्कुल आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे वीरेंद्र गुप्ता भैया जी, और थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा सॉन्ग कब प्ले होगा, तो बिल्कुल आपकी भी सॉन्ग प्ले होगा, थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो 90.4 FM पर।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कुमार सानू लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, और 20 में से गाने की फरमाइश किया गया था जिसकी वजह से थोड़ी सी इधर उधर हो गई और दूसरे गाने प्ले हो गए थे। चलिए, आप लोग से हम हर रोज़ कहते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग मुख्य नाम बताएंगे ताकि हमें भी सहूलियत मिले आप सभी की फरमाइश को पूरा करने में। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे ब्रिज बिहारी पांडे जी का प्रोफेसर मूवी से गाने की फरमाइश किए हुए हैं, और इनके फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमसेम 9.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सब और स्पेशल एसएमएस फरमाइश का आगे मिसेज पहुंचाए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी के करियर एक्सल नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, गुलाबी गुलाबी आँखों से पिला दे तो मैं पीने का नाम ना लो। तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: के सुन
1: नहीं प्ले होगा क्या? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले कर दी। और गाने का बोल दी है, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने, हम सभी आप एंजॉय करें अपने गानों के साथ और साथ ही साथ इजाजत, सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: ऑलराइट।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89470।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ 7277166596। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे सारे लिसनर हमसे जुड़ते हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है मेहंदी रंग लाई। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।

तो अभी आप सुन रहे थे मेरी तरफ से खूबसूरत सा गाना मेहंदी रंग लाई, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, गुड आफ्टरनून। मनीष रजाक फाजिलगंज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और लिख रहे हैं आज हमें भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा, गाने का लिंक भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मदन चौधरी ग्राम असनी गया से, और मेरा सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे दिव्या भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं जाकिर शेख, लिख रहे हैं हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि यहाँ खूबसूरत फूल पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं आपके लिए है। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम, मनोरमा दी, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इजर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम गाना सुनने के बाद। और गाने का लिंक यहाँ पहुँच गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपके भी, गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ जो अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं, गाना मुझको सुनना है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और मैसेज करने वाली हैं फरीदा बंगरा से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहती हैं आज कहना ज़रूरी है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, अंदाज मूवी का गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रमजीम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9852788291 से जुड़ सकते हैं और हमारा कॉल करने के लिए नंबर है 72776-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, राजन कुमार तमको ही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और जुड़ गए हैं। हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमारे भी गाने की फरमाइश है बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिखूं कुछ आज यह वक्त का तकाजा है, मेरे दिल का दर्द अभी ताजा ताजा है, गिर पड़ते हैं मेरे आंसू मेरे ही कागज पर, लगता है कि कलम में स्याही का दर्द ज्यादा है। और काफी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर जी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं और कोई गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? तो मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून, मैम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से जुड़ गई हैं और लिख रही हैं मैम मुझे भी मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए। और कैसी हैं आप दीदी बताइए, और मनोरमा दी कैसी हैं? तो जी मैं ठीक हूँ और मनोरमा जी भी ठीक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि भारती जी क्या आप हमारा भी गाना बजा सकती हैं, और हम पहली बार मैसेज कर रहे हैं और यहाँ मैसेज करने वाले हैं नीरज सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है कि हुआई परदेसी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.9।

0: दसाब क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:47 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रुमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रुमझिम के सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच गया है नीरज सिंह जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मेरा सॉन्ग बजाने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से आपका प्रोग्राम ऑनलाइन सुन रहा हूँ, और मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि गाना बजा दी भारती जी, और प्लीज़ प्लीज़ लिख रही हैं, और लिख रही हैं कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही हूँ तुम गलत के खेल में, न जाने कितने रिश्ते ढह गए। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाना सुनना चाहते हैं संजय यादव दुबई से जुड़े हैं, और गाने की यहाँ लिंक पहुँची हुई है, और गाने की बोल है बरसात है। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं यह प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ रेडियो रुमझिम 90.4 FM में।

और इसी के साथ मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि हमारे स्टूडियो में अभी हेलो माय चॉइस की रिकॉर्डिंग चल रही है, और जिनको भी रिकॉर्डिंग कराना है वो अपने गाने की फरमाइश की रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। तो आप सभी इस गाने को इंजॉय कर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो जिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है करिश्मा जी की तरफ से जो कि लिख रही हैं उत्तम सोनी जी का क्या हाल है पूछ के बताइए दी। तो जी मैंने तो मैसेज शामिल कर लिया और वो ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं बसंत कुमार ठाकुर, मुझे भी गाना सुनना है। तो जी मैंने आपके गाने को पहले ही प्ले किया था, परसों ही प्ले किया था, फिर दोबारा आज नहीं कर सकती, थोड़ा आप वेट करिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, गुड आफ्टरनून आन बानसान, और मेरा नाम आप बताइए। तो जी आपका नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, राजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और फरमाइश पहुँचे हुए है और गाने की बोल है अब तेरे दिल में हम आ गए। और आरजू मूवी का गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे आरजू मूवी का काफ़ी बेहतरीन गाना, और इसी के साथ यहाँ बढ़ते हैं आगे। और मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं राजन कुमार जी की, भारती जी गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, भाई दिल्ली से हमारा भी आज हाजिरी लगा दीजिएगा और मेरा भी गाने की फरमाइश है, और आज गाने की फरमाइश करना चाहते हैं बोलिएगा तो आज गाने की फरमाइश भेज देंगे। तो जी बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश मैं कल पूरा करूंगी क्योंकि कल आपका दिन है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि काहो उत्तम भाई का हालचाल बाहो, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हम लोग ने भी एक गीत की फरमाइश की है और गीत की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, आई एम अभी मैं दिल्ली में हूँ और साथ में गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं सलमान जी और तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, और कह रहे हैं कोई भी भोजपुरी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक भोजपुरी गाना प्ले करती हूँ, और गाने की बोल है दिलवा ले गए ले राजा, शिल्पी राज का गाना है। तो प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के माध्यम से जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि सड़क किनारे एक बनिए कि छोटी सी दुकान थी, अचानक एक दिन उसके सामने एक बड़ा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, घी 300 किलो। बनिए ने भी बोर्ड लगा दिया, घी 280 किलो रुपए किलो। और स्टोर वाले ने फिर अगले दिन बैनर टांग दिया, घी 260 रुपए। और बनिए ने फिर बोर्ड पे लिख दिया, घी 240 रुपए। ये रोज की मारा मारी देख के एक सज्जन ने बनिए को समझाया कि वो बड़ा स्टोर है, वो घाटा भी उठा लेगा, तो उनसे ज़्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसकी बराबरी मत करो। बनिए ने उस सज्जन की ओर सिर से पांव तक देखा और बोला, लिखा है, बोल रहे हैं कि हम, बनिए ने बोला, हम घी रखते ही नहीं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम बा, गुड़ छू के भारती जी, हमहूँ आगल वानी और हमरो हाजरी लगा दी और हम कुनवा मोड़ घर से जुड़ल वानी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष रजाक जी की, बता दीजिए मेरा गाना आज बजेगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश मैं कल पूरी करूँगी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, हम दिल्ली से अनीस, गाना सुनना है मुझे और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है अंगूरी बदन। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी।

0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी
1: छम छम के अंगूरी बदन
0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा गाना अंगूरी बदन, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, डियर भारती जी, आप कैसी हैं आजकल? आप बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और लिख रहे हैं कि सामने हो मंजिल तो कदम ना मोड़ना, जो दिल में हो वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, सिर्फ सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन ना छोड़ना। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं करिश्मा जी का, लिख रहे हैं धनेश, लिख रहे हैं गणेश जी की करिश्मा जी का गाना बजा दीजिए। तो जी, मैं गाना इसलिए नहीं बजा रही हूँ क्योंकि इनकी गाने की फरमाइश पूरी की जा चुकी है। और लिख रहे हैं कि बेटी किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीब के घर मिलता है उतना अमीर के घर पर नहीं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है गणेश जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पुट्टू भाई मीना बाजार से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, नमस्कार, नमस्ते, कैसी हैं आप और क्या हालचाल है आपका? तो जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि और उमा शंकर भैया नमस्ते, कैसे हैं आप और क्या हाल है आपका और ज़रूर बताइए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास उमा शंकर जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की फरमाइश है मुजफ्फर के लीची। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:24 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दो, यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि उमा शंकर जी की तरफ से यहाँ फीडबैक मैसेज पहुँच गया है और वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
10: सुन के मजा आ गया। मेरा नाम अंबिका, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
9: और काफी खूबसूरत वॉइस में फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और मैं रोहित देहरादून से, और लिख रहे हैं कि ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं, अगर मैं होता बादशाह तो एक कानून बना देता, दिल तोड़ने वाले को सजाए मौत हुक्म सुना देता। क्या बात है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, यूट्यूब से देखकर कढ़ाई पनीर बनाया था, घर वाले बोल रहे हैं पूरा तुम्हें ही खाना है, नहीं तो कढ़ाई तुम्हारे सिर पर मार देंगे। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
11: जी, नमस्कार।
9: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: मैं मोहम्मद सिराज हुसैन बात कर रहा हूँ, तुमको ही रास्ते यहाँ से जान।
9: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: बस बढ़िया है, अपना बताएं।
9: जी हम सब भी ठीक हैं। तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
11: इसी नंबर से एक बार कॉल किया था तो चला गया था ऑफिस पे।
9: जी दूसरा नंबर होगा वो ऑफिस का, और ये तो शो का नंबर है।
11: इसी नंबर पे लगा रहा था तो उठाए तो बोले, मैम बोला कि गाना सुनना है, तो बोले कि नहीं ये ऑफिस का नंबर है, तो शायद मुझे लगा कि ये बदल गया है।
9: नहीं नहीं, एक दो नंबर इधर उधर आप डायल किए होंगे तो चला गया होगा उधर।
11: तो मुझे आज सॉन्ग सुना दीजिए ये वाला।

तुम्हारा है खुदा है, ये तेरी रजा है।

0: जी, तो आपका गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: आपको और
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ओके, थैंक यू।
2: खा रहा हूँ आदमी, खुद की तरस खा रहा हूँ।

तो अभी हम लोग काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना सुन रहे थे खुदाया, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि अगर कोई आपके मैसेज को इग्नोर करता है तो लिख दो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया है, फिर नेट बंद कर दो, सारा दिन परेशान घूमेगा। और जी रोहित जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून, हम श्याम चौधरी मलेशिया से, और मुझे भी गाना सुनना है। और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और इसी के साथ लिख रहे हैं कि सिर्फ नाम ही नहीं, मेरी हर सांस पर तेरा हक है, तू मुस्कुरा दे तो मेरी हर राह में सिर्फ महक है, इतनी फिक्र तो मैं अपनी भी नहीं करता जितनी हर पल तेरी करने लगा हूँ, तुम मेरी वो खुशबू खूबसूरत शाम हो जिसकी कोई सुबह नहीं होती, बस सुकून होता है, और बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए, बात ना हो तो दिल उदास हो जाता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं श्याम चौधरी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हैं, और आपका प्रोग्राम ऑनलाइन सुन रहे हैं, और मुझे भी गाना सुनना है। और यहाँ लिंक के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है शानू तेडी तेडी तकड़ी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करे 85070-32042 पे।
12: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप तो जानते ही हैं कि जो शो चल रहा है उसका नाम योर वॉइस योर चॉइस है, मतलब कि आपकी आवाज़ और आपकी पसंद। तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ में गाने की फरमाइश भेज सकते हैं, और रिकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 35 सेकंड का होना चाहिए और अपने गाने को सुन सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं आजमगढ़ मुबारकपुर से जुड़ गया हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मेरे भी गाने की फरमाइश है, प्ले कर दीजिएगा। तो जी, मैं आपके गाने को मैं कल प्ले करूंगी, क्योंकि कल आपके गाने की बारी है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, मजेदार जोक पहुंचा हुआ है और लिख रहा है, मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गया है, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फिर मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारो, मारे नहीं क्या। लिख रहे हैं, नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाज है। और काफी मजेदार लाइन पहुंची हुई है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, रहीम आलम बेंगलोर से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते सोनू जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि आलम राज नरकटिया बाजार वार्ड नंबर 8 बिहार मोतिहारी जिला से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश मैं कल पूरी करूंगी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है। और संदीप कुमार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और अशोक प्रसाद जी के साथ में सुनना चाहते हैं गाने को। और हसनपुरा के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा तो गाना आपने बजाया ही नहीं, केवल मैसेज शामिल क्यों, आप मुझसे नाराज हैं क्या? तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और गाने की बोल है मेरे ज़िंदगी के मालिक, और मैसेज करने वाले हैं श्याम सुंदर जी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भारती जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं श्याम चौधरी जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, और लिख रहे हैं बातों में तेरी सेहत सा मिठास भरा है, दिल में तेरी सादगी का एक नया सवेरा है, खुश रहा करो तुम यूं ही हमेशा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान पर पूरे शहर का पहरा है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोहल्ले के आशिक कभी किसी से डरा नहीं करते, अपनी जान को छोड़कर ये किसी से मोहब्बत करा नहीं करते, और एक मेरा दोस्त है जो हाथ में मरहम लेकर घूमता है, यार कोई इसे बता दो पहली मोहब्बत के दिए जख्म कभी भरा नहीं करते। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते मैम, मैं कन्हैया दास बोल रहा हूँ और दुबई से जुड़ा हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, क्या मैं गाने की फरमाइश कर सकता हूँ? और गोलू राज के गीत सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि उत्तम भाई जी के लिए यहाँ से हम लोग के लिए, हम लोग की तरफ से भेज रहे हैं, भेज दीजिएगा लौकी केला का पेड़, केला का पेड़ फल सहित। तो जी काफ़ी बढ़िया पहुंचा हुआ है, तो जी मैं भेज दूंगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा गाना पोटली में बांध के रखे हैं क्या? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैसेज करने वाले हैं रहीम जी, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं। लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, हम राम कुमार MP नर्मदापुरम वाइस से, हमको भी एक गाना सुनना है, और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची है, तुरा अखिया के काजर बेईमान, हमारे साथ शुभम भैया जी और पंकज ठेकेदार जी और साहू जी राइस मिल से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
4: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
3: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
5: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहां मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि अर्ज किया है इश्क में पढ़ने से पहले दिमाग लगाना चाहिए, इश्क में पढ़ने से पहले दिमाग लगाना चाहिए और अगर वो ना माने तो चुपचाप अपना फ़ोन चार्ज पर लगाना चाहिए। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है श्याम सुंदर

0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार।
1: हमार कोलवा जंगल में कौन कौन वोट कर देले रनिया का?
0: ना जी ना केले रनिया बोली।
1: कैसे कोई दिन से फोन करत नहीं रहवा रिसीव नहीं की करत?
0: ऐसा कोनो बात नहीं है, रिसीव सबके होके फोन होता। अब देर और
1: 16 दिन आ गए हो गए
0: अभी देखनी है तो और रिसीव कहीं नहीं है।
1: अच्छा जब पहले रूल रहा तो हमने मैम अभी रूल बा कि कॉल के द्वारा रोज कॉल कर सकत आदमी नो?
0: ना ना जन पहले रोज रहल है एक हफ्ता वाला वो बा।
1: तो कॉल वाला तो रोज रहल?
0: कॉल वाला कहाँ रोज है
1: सोनी मैम, रनी अब रोज हमनी से बात को कर लाऊ आगे रिसीव करत रहनिया।
0: ना ना ऐसा बात नहीं है, एक हफ्ता में एक बार ही फरमाइश कर सकता नहीं रहो।
1: अच्छा
0: जी
1: तो मैम गाना सुना दे।
0: बिल्कुल।
1: और बार से लोकेशन बाले?
0: जी जी सबके ठीक बार हुआ बताए।
1: जी हम भी ठीक बने। सन्यासी बाबा अभी दस्तक नहीं की देले का? सन्यासी बाबा अभी दस्तक नहीं की देले शो में?
0: ना ना वहाँ के शो में जुड़ल वानी आ चुकल वानी।
1: अच्छा आज चुकल वानी से नहीं हमारे रेडियो बंद हो गई लाओ इस दुनिया।
0: तो बता दे
1: गाना सुना दे मैम। अंत फिल्म के गाना बा करती हूँ प्यार सिर्फ संडे को।
0: जी
1: और डेलीकेट रही उत्तम सोनी जी बने सम्राटी बाबा रंजन बने सम्राम जी बने उमा शंकर भाई बने रानी जी बने शबनम जी बने रेडियो रिमझिम जितना भी सुनता सभी श्रोता लोग के।
0: जी जी तो राउर गाना प्ले करता नहीं?
1: जी मैम
0: सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। जी
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, करती हूँ मैं तो प्यार सिर्फ संडे को। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रेडियो रमजिन दोस्त के, का हाल चाल बा, और अपना बता देना क्या हाल है। और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग संडे को। और साजिया नवादा से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच रहा है जो कि लिख रहा है कि मुझे भी गाना सुनना है। हेलो भारती मैम, गुड आफ्टरनून, और मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं अध्या का रहने वाला हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है खास तू हमारे। और गाने की बोल है काश आप हमारे होते, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रमजिम 91.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। और जिनके भी गाने को प्ले नहीं किया गया है उनके गाने को दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं मोहम्मद आरिफ जी, थैंक यू गाना बजाने के लिए और इन्जॉय कीजिए आप सभी इस गाने को।

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25% जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
7: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
8: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
9: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
8: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
10: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
8: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
11: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
14: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9939365923। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
13: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
14: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
14: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
4: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार मिश्रा जी की, सफ़र वहीं तक जहाँ तक भारती जी आप हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक भारती जी आप हो। वैसे तो हजारों फूल खिलते हैं गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक जहाँ तक भारती जी आप हो। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रेडियो रिमझिम दोस्तों, के क्या हालचाल है और अपना बताइए, और सुपर सॉन्ग चल रहा है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं, दोस्ती भी तुम, प्यार भी तुम, एक भी तुम, हजार भी तुम, गुस्सा भी तुम, माफ़ी भी तुम, जिंदगी के सफ़र में मेरे लिए काफ़ी हो तुम। और साजिया नवादा से जुड़ी हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, न्यायपारा विरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, और आज हमारा फरमाइश पूरा कीजिए क्योंकि हमारा काम बहुत बढ़ चुका है, हर दिन मीटिंग रहता है, और क्योंकि हम कोर्ट सोसाइटी चलाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके गाने की फरमाइश मैंने सैटरडे को पूरा किया था इसीलिए मैं आज प्ले नहीं कर रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया और गाना सुनना चाहती हैं जो कि लिख रही है, नमस्कार भारती दी, हम भी इस साल पितर भात घर हर धर है और पितर खाने के घर घर जाते हैं, और न्यायपारा विरही से लीला साहू, और मुझे गाना सुना दीजिएगा दीदी जी। और लिख रही है, गाने के बोल हैं जुली जुली, हमको फिल्म जीते हैं शान से गाना सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए ये प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: तो कौन मांगता।
1: जानी जानी चोरी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान।

0: हाथ तेरा मांगा, साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया, ला ला ला ला ला, हाथ तेरा मांगा, साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मेरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया, जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM। और आप सबको बता दो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि रोहित जी लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लीला साहू जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रही हैं, धन्यवाद भारती दीदी, आपके गाना, आपने गाना सुनाया। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, और पूछ रहे हैं क्या मेरा 1 हफ्ता हो गया। तो जी, आपके गाने की फरमाइश की। कल पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं बातों में तेरी सेहत सा मिठास है, दिल में तेरी सादगी का एक नया सवेरा है, खुश रहा करो तुम यूं ही हमेशा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान पर पूरा शहर का पहरा है। और लिख रहे हैं लफ्ज कम पड़ जाते हैं तेरी तारीफ में भारती, तू जब भी बोले हवाओं में एक ताजगी बिखरती है, रब से बस इतनी सी दुआ है हमारी तेरे चेहरे से ये हंसी कभी ओझल ना हो। और मैसेज करने वाले हैं विशाल पांडे जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका आपका इसके लिए आपसे दिल से धन्यवाद है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और लिख रहे हैं मैं कन्हैया दास बोल रहा हूँ दुबई से, और मुझे गाना सुनना है। और यहाँ गाना की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है गोलू राज का गीत सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है दिलवा टुटले पर जननी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604-4348-652 पे।
4: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कन्हैया दास जी की, थैंक्स मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं संजय यादव जी की, नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है रेशमा जी की तरफ से जो कि लिख रही हैं क्या हाल चाल है, और मेरे यहाँ बारिश हो रहा है धीमे धीमे, और आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं। और लिख रहे हैं आप दोनों मैम का क्या हाल है, आप ठीक हैं ना? तो जी हम सब ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं, कैसी हैं। और लिख रही हैं कि जो गाना बजवाया है वो काफ़ी अच्छा गाना है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलवा टूटले पे जानी भारती जी, ऐसा गाना बजा के मुझे रुलाइएगा क्या। और बहुत अच्छा गाना जिस भाई ने भी ये गाना बजवाया, काफ़ी लाजवाब गाना है, और उनको दिल से शुक्रिया लिख रहे हैं धनेश जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है विशाल पांडे जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं नीलकमल का, और गाने की बोल है क देले बाड़ू रात में भी दिन, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: है।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, नमस्ते, मैं शहीद हुसैन और मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिना देरी किए और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल था यारा ओ यारा। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्ते, क्या हाल है जी। तो मैं ठीक हूँ और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम नमस्ते, क्या हाल है। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, तो मेरा तो हाल ठीक है और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हजार सूरत से, मेरा भी पूरा हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी दो बातें आपसे की तो दिल का दर्द खो गया। लोगों ने हमसे पूछा तुमको क्या हो गया, हम तो बस यूं ही मुस्कुरा कर रह गए। मनोरमा जी अब कैसे कहूँ हमें किसी से प्यार हो गया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी जो कि लिख रहे हैं कि प्रिय मेरे प्रिय आरजे मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जो कि मेरा भी स्वागत इतने प्यार से आप लोग करते हैं, लोग बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आ रहे हैं पर मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी कैसी हैं और आपका लंच हो गया क्या। तो जी बिल्कुल मेरा तो लंच हो गया। लिख रहे हैं कि रानी मुखर्जी का हाल बा हाल चाल तो ठीक बानू। और मैसेज करने वाली हैं रेशमा पठानपट्टी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैं बता दूं कि मेरा हाल चाल तो ठीक है और आप बताइए कि आप कैसी हैं। और यहाँ पे फरमाइश पूछे हुए जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, मेरा नाम रॉकी है और मुझे भी गाना सुनना है अंकुश राजा की आवाज़ में। और गाने के बोल हैं लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। तो चलिए आपके गाने को रॉकी जी हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM प्यारा सा सॉन्ग।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे अब मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम गाना बजाने के लिए, मेरा नाम तबरेज आलम है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नया नाम दिए हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, और बहुत अच्छा नाम दिए हैं आपको, जो कि नाम रखे हैं लो रानी मुखर्जी। और तो मैं क्या ही बताऊँ, ये लोग अपने मन से रखे हैं लो, बोलते हैं लो कि मेरा आवाज़ रानी मुखर्जी की तरह है, तो अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, और लिख रहे हैं कि आज मेरा गाना बजेगा तो मैडम जी बता दीजिएगा। मनोरमा मैडम जी, तो जी आपका गाना ज़रूर बजेगा, बता दीजिए और अपनी फरमाइश दे दीजिए, ज़रूर बजेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लाल बाबू सिंह नवादा हर, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल चाल है, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, बेहद सको सॉन्ग।

ताकि सुना तारू असही उधार थोड़े दिवेले रहे, तू हमरो से लेत रहे। लेकिन इतना ना मार पिटा गई बा कि पूरा जिला जवार जाना था कि ओकर दिन बन गई बा।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि जयकिशोर प्रसाद जी की तरफ से था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, और तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मनोरमा मैम, बेतिया जिला रामनगर से हूँ और मेरा गाने की फरमाइश है, और लिख रहे हैं कि अतुला खान का गाना है और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं समीर अली खान जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मनोरमा मैम गाना प्ले करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि करिश्मा जी का गाना कब बजेगा, और लिख रहे हैं क्या आपके तरफ बारिश हुआ है कि नहीं बताइए। तो जी हमारे तरफ बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन हवा चल रहा है, और लिख रहे हैं कि मेरे तरफ बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। अच्छा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर फरमाइश पहुँची है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम लाल बाबू सिंह है जो कि नवादा के रहने वाले हैं, और गाने की फरमाइश है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:36 हो चुके हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं लाल बाबू सिंह जो कि नवादा के रहने वाले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो जी ज़रूर आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मनोरमा जी, कैसे हैं आप और आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ तूफ़ान के साथ बारिश हो रहा है बहुत तेज़। और मैसेज करने वाले हैं रोहित कुमार देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं बता दूं कि हमारे तरफ तो बारिश नहीं हो रही है, हवा चल रहा है लेकिन। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि हजारों बातें मिलकर एक राज बनता है, हजारों बात मिलकर एक राज बनता है, सात सुरों के मिलने से साज बनता है, आशिक के मरने पर कफन भी नहीं मिलता और हसीनाओं के मरने पर ताज बनता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैं जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, मेरा भी गाने की फरमाइश है प्लीज़ बजा दीजिए। जो कि लिख रहे हैं कि गाने के बोले दिलवा में घर बन के उड़ जाइब हुए मैना, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: एक मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। धनेश कुमार मिश्रा जी जो कि मजेदार जोक के साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि पत्नी सब्जी कैसी बनी, पति बहुत शानदार, पत्नी पर बेटे ने तो अच्छी, पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई, पति नादान है अभी शादी होने के बाद, सब सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कहा, पर क्या बोलना। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मनोरमा मैम, मैं बेतिया जिला रामगढ़ से हूँ और मेरे भी गाने की फरमाइश है। और लिख रहे हैं कि क्या मनोरमा जी हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो गाना नहीं बजा रही हैं। और लिख रहे हैं कि अगर गाना नहीं बजाइएगा तो लफड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और क्या लाइन लिख रहे हैं, थोड़ा सोच समझिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्यारा सा सॉन्ग।
1: उसके उस वॉइस फिर

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे थे कि मुझसे दुश्मनी था क्या जो गाना नहीं प्ले कर रही थी, तो नहीं बिल्कुल नहीं, आप सभी के गाने को हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए लो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम कैसी हैं, और मैसेज करने वाले हैं साहू जी, और लिख रहे हैं कि रोशनी भारद्वाज की तरफ से नमस्ते। और रोशनी भारद्वाज जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम राधे राधे पाजी यूपी 54 से, और लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, आज कुछ नहीं भेज पाऊँगा गाड़ी चला रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और कोई बात नहीं है आप नेक्स्ट टाइम भेज दीजिएगा। वैसे आप बहुत ही अच्छे लाइन के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा शायरी भी भेजते हैं और अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा गाना बजा दीजिए, और फरमाइश की इनकी फरमाइश वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: हेलो दीदी गुड आफ्टरनून, मुझको गीत सुनना है गोदा गोदा खाली फाइन गोदा नवा के गोरे हाथों अपने नाम सजनवा के, यही सुनना है बजा दीजिए। डिडगेट आपको रहेगा और भारती दीदी को रहेगा, और जितना सुन रहे हैं सबको रहेगा, रानी दीदी को रहेगा, उत्तम सोनी को रहेगा, और मेरे भैया सुनेंगे और हम सुनेंगे, मेरे मौई मेरे पापा और मेरे बिटू भैया सुनेंगे, बजा दीजिए।
0: और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में पहुंची हुई है फरमाइश, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुँच गया, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनके फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू दीदी गीत प्ले करने के लिए, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हम अपना गीत सुन रहे हैं, आप बताइए आपको गीत कैसा लग रहा है और आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी। हम और गणेश भी और सुबोध भी यहीं पे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं कि
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था और क्या ही बताएं। और यहाँ पे सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गया। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय बाय मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी, और तो आप लोग को भी मैं बता दूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, जो कि सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गया। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप WhatsApp, Insta और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा WhatsApp नंबर है 98527888291, और अगर कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं लूँगी आप सभी से विदा और मिलते हैं अगले दिन। तब तक सबके लिए बाय बाय, और मेरे तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करिए।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: रात होई ता बिहान होई बेकरी, खैला से बेसी होई ता जियान होई बेकरी, और खिलल बगिया

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
16: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
15: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
12: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
17: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए, जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: तू जो है।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: ऑलराइट।

0: चलो ठीक बा, माफ करनी।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
2: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
1: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
5: Now pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
5: Pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
7: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
8: Hello, namaste, namaskar, kaise hain aap sab? Umeed karti hoon aap sab theek honge. Main hoon aap sabki dost RJ Manorama aur aap sun rahe hain Radio Rimchim 90.4 FM aur samay ho gaya हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494 जी हाँ 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
9: हेलो,
10: नमस्ते मैडम
9: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम
10: में। मुझे फोन लगा लो, अभी कल लगा लो।
9: अच्छा जी,
10: हमारा फोन एक हफ्ते के बाद लगे जाल में तो बात करेंगे सर, मैं बिजी में बानी है ना, वो कितना सीन पता नहीं।
9: अच्छा अच्छा, नाइस है, कोई बात नहीं के इसे बता दिया। अपन नाम कहाँ से बोला था? निवा
10: कला महीने से बोलते नहीं।
9: अच्छा, नाम?
10: परमात्मा कुमार।
9: अच्छा जी, हाँ जी, बहुत काफी देर से बात फोन के लिए बानी।
10: हाँ, एक हफ्ते के बाद कॉल हम करेंगे पास।
9: अच्छा जी, तो हेलो माइक बाजी का है ना, बोली मैं तो कॉल कभी भी बात सकता जी, राउ तो कॉल बात सकता। हेलो माई चॉइस में
10: आज शाम को ना बाजी लास्ट में कॉल लगा लो, तो सोनू सरगम गाना बजा रहे हैं। सोनू सरगम
9: गाने के
10: गाना के नाम पे सुना है कॉल जिन पर।
9: अच्छा, और गाना क्यों सुनवाई की भी चाहता नहीं?
10: रेडियो रेडियो सुनने वाला के सब कह रहे संतोष और बिजली रंजी सब कुछ।
9: चलिए तो फिर और गाना हम प्ले करता नहीं जी।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: क्या हाल है?
1: जी हाल तो ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा तो ठीक है, हो गया है।
1: हाँ जी हो गया है। नाम बता दीजिए अपना।
0: उज्जवल।
1: उज्जवल
0: जिला उज्जवल।
1: अच्छा, और कहाँ से?
0: गोपालगंज
1: में। कहाँ?
0: सुनना है।
1: जी जी, गाना हम आपको सुनवाएंगे, पर ये बता दीजिए कि आप गोपालगंज में कहाँ से बोल रहे हैं?
0: कबीलासपुर से।
1: अच्छा, तो फिर कौन सा गाना सुनिएगा? और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं? ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू,
1: वेलकम। सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं रेडियो 90.4
15: एफएम में। जी आप बाकी जी बोल रहे हैं?
14: नहीं,
15: आज तो मनोरमा जी का गाना हम सुने हैं। आज मनोरमा जी को बज रहा था
14: जी। जी
15: तो आप कौन सा गाना सुनवाइएगा?
14: आप जो बताएंगे वही गाना।
15: और बोलिए जी, हमको एक खबर है, हम मनान बोल रहे हैं कपूरा से।
14: जी जी, कैसे हैं आप?
15: हाँ, ताज मनोरमा जी का आज हम गाना सुने हैं।
14: अच्छा।
15: पवन झटोरा मेरे संग आए तो गुनगुन गुनगुन आवाज चले।
14: जी जी, आप तो गाना सही बजा था ना आपका।
15: अभी सुने हैं, साफ तौर पर घर में बैठे हैं, मेरा गाना आया हम सुन लिए, बहुत हुआ हमारा।
14: अच्छा जी, तो फिर फरमाइश बता दीजिए।
15: और फरमाइश मनोरमा जी, आप कोई अपने मतलब से बजाइए ना कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाइएगा? आपका मतलब सुन लिए, मनोरमा जी कबीर का मतलब से गाना नहीं सुना है अभी।
14: अच्छा जी,
15: कौन गाना सुनवाइएगा? यानी हमको चाहिए हिंदी गाना, तो चाहिए नहीं भोजपुरी चाहिए, नहीं और कुछ नहीं, वो फिल्मी सॉन्ग होता है ना वही हमको चाहिए। और हम तो कड़े उम्र दराज, अब बच्चे वाला गाना नहीं चाहिए, और उसी में से कोई गाना सुनाइए जो कि एजेड लोगों का अच्छा लगे।
14: जी जी, वैसे मैं बता दूँ तो आप बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करते हैं, तो आप ही बता दे तो ज्यादा बेहतर होता।
15: अरे मनोरमा जी का मतलब से जो हम अपना सुनना चाहते हैं तो ठीक, आप हमसे कह रहे हैं गाना सुनाइए हमको, याद आता है माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, ये कह रहा हूँ। बहुत
14: तो इस गाने की मतलब मूवी नेम आपको याद है?
15: जी
14: जी, ये मूवी का
15: शायद ही नाम जाते है, किसका कौन सा फिल्म का पता नहीं, और ये शायद लाता का गाना है।
14: अच्छा अच्छा।
15: हाँ, माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा ले और मेरा कोई।
14: डेडिकेट भी करना चाहेंगे? जी जी, चलिए तो यही गाना
15: सुना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
14: जी जी बिल्कुल, और डेडिकेट भी करिएगा।
15: ये डेडिकेट क्या था, दूसरे के नाम से किसी को अच्छा लगे तो उसके नाम से डेडिकेट है, वरना तो मैं तो अपने यादगार के हिस्से से मैं ये गाना को चूज कर रहा हूँ ना, तो अब डेडिकेट किससे रहेगा, हमारे नाम पर रहेगा है ना, और किसी का तो नहीं है जिसने लेकर के प्राप्त किया।
14: चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कैसी है आप?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम तो ठीक है मैम, तो अभी तो एक फोन लगा रहे
1: तो कॉल भी लग गया, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
0: सोहिला दिल बोल रहे हैं।
1: कहाँ से?
0: पटना से मैम।
1: सर कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना में सुना दे दीजिए, सुनदान में तो नहीं है फिर गाना। कपूर का बुरा है बोला है जैसा भी है मेरा पति देवता है।
1: एक बार और बता दीजिए।
0: वही गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा? एक बार और बता दीजिए
0: गाना। सुंदर सुंदर गाना सुना दीजिए, कोई भी बताए हैं वही सुंदर भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है।
1: और ये गाना आप किसी को सुनाइएगा?
0: किसी को सुनाएंगे? हम सुनेंगे, डेली सुनते हैं।
1: गाना आपका प्ले करते हैं
0: जी।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकू 90.4।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए, जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone gindi bajti hai to kehte hai hello,
10: hello, hello, hello, hello, hello.
11: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: हेलो मैम।
13: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
12: मेरा नाम सोनम है।
13: जी
12: जी,
13: नाम एक बार और बता दीजिए।
12: मेरा नाम सोनम है।
13: और कहाँ से बोल रही हैं सोनम जी?
12: मैं गोपालगंज से।
13: गोपालगंज में कहाँ?
12: बंजारी से।
13: अच्छा जी, वो सोनम जी और बताइए क्या है आज की फरमाइश?
12: मुझे सॉन्ग सुनना था।
13: बता दीजिए
12: सॉन्ग का नाम। मैं खिसाड़ी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
13: कौन सा बता दीजिए?
12: और जो एक गाना है ना, किसी का दिल टूटल हुई तबे डोली उठल हुई।
13: जी जी
12: हाँ, वही है ना।
13: तो क्या ये गाना मुझे गा के बताएंगी ये दोनों ही?
12: बस एक नहीं मुझे याद है।
13: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं है। और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगी?
12: यस मेरी बहन है, छोटी बहन है।
13: ओके वैसे क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल की हैं?
12: जी।
13: अच्छा जी तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको रेडियो रिमझिम का?
12: अच्छा लगता है।
13: सबसे सुनते हैं नहीं है आप ये कार्यक्रम?
12: अभी तो फिलहाल जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से सुन रही हूँ, 10-15 दिन से।
13: अच्छा जी वैसे कहाँ रहती हैं आप?
12: मैं यूपी रहती हूँ।
13: अच्छा जी चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
12: जी
13: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मुझे तो लग रहा था
0: लगेगा।
1: हाँ
0: चलिए कॉल भी लग गया और आपसे बातें भी हो गई।
1: भारती मैम कैसी हैं?
0: जी भारती मैम भी बढ़िया है। जी जी और आप ठीक हैं?
1: हाँ मैं भी बातें करके बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। बता दीजिए।
1: हमको तुम चुपराज
0: जी जाके बताएंगे मुझे।
1: मुझे गाने नहीं आता लेकिन मुझे आज बता दूंगी।
0: ये कोई बात नहीं, जो गाना अभी बताएंगे वही गाना प्ले करेंगे।
1: हाँ खा के तो यही आपको मेरी बहन है तृप्ति और गोपाल चिल्ड्रेन बिल्कुल उसको और आपको भारती मैम को मेरे सबको जितने भी जितना रहे सभी को।
0: ओके सुरभि जी
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। तो चलिए फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते
1: हैं।
0: बाय। जी बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
5: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
7: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड, सासामुसा, प्रभु मार्केट, मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट, हथुआ, थाना रोड, भोरे, थाना चौक, बरौली, स्टेशन रोड, सिद्धवलिया और थाना रोड, मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
10: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में।
12: जी और कोई ना रानी मुखर्जी जी, क्या हाल चल रहा?
13: जी जी ठीक बा, अपन सही रहो, कैसे बानी?
12: हम ठीक है बानी, कोनी अगर यही देर ले माने जी जा कर ले कोई, हम कोनी तो उठे महाराज जाने आप जा के लागल बटे क्या
13: कर जी को कॉल कटेला तब तक दूसरा आ गेला।
12: हां तो इस समय में ना उठलो करे से कोनी तो रुका रहा है, मारता चल रहा है लागो बेचारा। अच्छा चला खा के आज बात कर रहा है बानी रानी मुखर्जी से, तो और सब क्या हाल चल रहा?
13: हाल चाल तो सब
12: बताएंगे। हम बहुत बढ़िया बानी, आप सब ठीक है? हम भी ठीक है, मान लिया सामने वाले का ठीक है, देख के और भी आदमी को खुश रहता है इंसान की। हाँ चलो तो खुशी में खुशी है, बढ़िया से खाना खा के आई है ना, गाय की पेड़ पर कॉल लेना है ना आपको।
13: जी जी,
12: मौसम कैसा हुआ जी आपने?
13: मौसम बता दी तो धूप निकल रहा बहुत तेज,
12: हवा चलाता की
13: ना? हवा तो बिल्कुल नहीं
12: चलता, यहाँ तो हवा के लिए बहुत ज्यादा तेज चलाता है, गर्मा तो बढ़ रही है, शाम तक की रात्रि का टाइम भी अगर बैठे। अच्छा वो गाना बैठे, वो गाना बैठे, गाना बैठे छोरी ना आचा रवा हो गई हो रे या जाट ना बहर या, ये खुशी कक्कर के गाना, खुशी कक्कर के छोरी ना सरिया के को रहे या जाई बहर या
13: कैसे बता
12: सकते? तो कोई तो हमें गाय के का बा छोरी ना पिया को रहे पिया को रहे पिया जाई ना बहर या, ऐसा ही कुछ बात, लेकिन लय गड़बड़ा था हमारा। तो सबसे पहले अपने के वाणी भारती जी वाणी कमरान भाई अत्यारी जी सोनू भाई और जितना कहीं सुनी वो सब सुनाते हैं, सब कोई जितना हमारे नाम से जाने पहचाने वाले बात सब और रेडियो जितना साथ कर सबको सुनाते हैं। तो ये बात रानी मुखर्जी जी, सब बढ़िया से बना रही और एक स्ट्रॉन्ग बना रही, आगे के जो काम के देखते रही, ताकि फिर हम कॉर्नर मोड़ पर मुलाकात हुई।
13: जी जी बिल्कुल, तो चलिए फिर एक साथ गाना हम प्ले करते हैं।
12: जी नमस्कार, बता
13: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: से यादव हर भाषा से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं आप?
0: ठीक है।
1: वो क्या हो रहा था?
0: क्या हो रहा है? नहीं, दुकान चल रहा है, दुकान चल रहा है
1: जी। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज
0: मैडम? मुझे खेसारी का नौ का गाना नहीं है।
1: कोई भी गाना, खेसारी लाल का नया गाना?
0: जी जी जी।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 57644।
8: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: नमस्ते दीदी
10: जी। नमस्ते,
9: क्या हाल है?
10: जी ठीक बा, आप बताइए।
9: अरे मस्त है एकदम। क्या फोन करने उठा, दीदी खाली बताया लगा ना।
10: क्या करी अब, पहले लोग कॉल कर चुका बात तो का ही कर सकता
9: नहीं था। नहीं 11 बजे में 5 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट तब लगा तो नहीं है तो उधर सीए चो आप आ जाओ। मोबाइल जो फोन नहीं है तब एकदम जगह तुम की होता जो वस्तु बताया लगा।
10: जी जी चलिए, वही तो फोन बात नहीं।
9: और सब बताए?
10: जी सब बढ़िया बात। तो कौन सा गाना सुने मार
9: जब फोन कहे ना कौन है आदमी,
10: मतलब इतना खुश हो जाने की गाना ही
9: बहुत खुशी
10: है।
9: दिन भर काम में मन लगेगा।
10: अच्छा जी,
9: हम सोचे नहीं की रोज रिकॉर्डिया हो तो सही है। आपको मैं 3 दिन बातें करे के बाद
10: तो रघुआ भी बहुत ही अच्छा बोले नहीं, से बात करके भी अच्छा लगेगा उनके भी।
9: ना आवा समय ना रघुआ समय बात करे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे बहुत अच्छा बोले
10: और ही बताए, खाना वाना खाने है कि ना?
9: जी खाना तो खा ले लगा नहीं।
10: चलिए ठीक बात है।
9: तो फरमाइश बता दी, भक्ति संग बढ़ सको तुम
10: बता दी।
9: टुंटुलाल के यहाँ से टुंटुलाल यादव के गाना बजा दी छठ पूजा के। ऐसा कर छठ मैया हमें आर्मी आर्मी लभर को।
10: और गाना के जो सुनाए के भी चाहते हैं,
9: डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको, भारती दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और श्रुति दीदी को, और सोनू सर के, अक्षर सर के, पंकज सर से, डेडिकेट सर का, और रानी जी है ना, रानी जी,
10: जी जी,
9: उसका भी सुनवाना है, रेशमा जी का सुनवाना है, राघव जी का सुनवाना है, और धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली सुनते हैं सुनवाना है, दिलीप राम को सुनवाना है, उत्तम सोनी को सुनवाना है, और करिश्मा जी को सुनवाना है, मेरा भाई एक छोटा वाला दृष्टि को सुनवाना है, और मेरे गाँव का एक मनीष भैया है उसको भी सुनवाना है।
10: गाना हम प्ले करते नहीं, मतलब इन सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
9: नमस्ते दीदी
10: जी। नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते। हम तो बिल्कुल ठीक बानी। रउआ बताई की रउआ कैसन बानी?
0: हमारा तो पिछले हुआ आदमी बिल्कुल ठीक बानी। जी आप तो पौधे के लगाए तो दूसरे बार में लाग गए। एक पहले ट्राई है ना कोई लोग।
1: अच्छा तो ट्राई करम तब न लागे।
0: गाना सुना दू पूरी गजल। मतलब के बाजान देव कुमार सिंह के हो ये गजल तो सुने के बते।
1: अरे वैसे बताई तो रहो खूब सुने नी गाना।
0: सोने तो रोजे कर ले। गाने तो हमारे जिंदगी के सहारा है। सुबह से लेके जब तक रात तक नींद ना आए जब तक गाना ही सुने के।
1: अच्छा
0: लगे गाना याद रही ना?
1: बिल्कुल
0: अपना विश्वास दायक गाना है हमारा।
1: जी बिल्कुल। डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं।
0: डेडिकेट रही पार्सी जी के, मनोरमा जी के और अनिल भाई के जोधपुर वाले कितना सारा जाने वाला बारे सबसे।
1: फिर रेडी के साथ ही गाना हम प्ले करता नहीं। सबके साथ रेडियो 90.4।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
11: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी मैम, अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
12: जी मैम, थैंक यू। क्या हाल है?
13: जी हाल तो ठीक है, आप बताइए।
12: मेरा भी ठीक है। आप मलेरमा में बोलेंगे क्या?
13: हाँ जी।
12: बताइए, हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, आपका नाम को पता करनी है।
13: अच्छा जी, कैसे आपका नाम?
12: मैं साजिया नवादा से बोल रही हूँ।
13: जी साजिया जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना?
12: हाँ बढ़िया है, आप बताइए।
13: जी जी मैं भी बढ़िया।
12: नाक्रा वगैरह हो गया है?
13: हाँ जी हो गया है। और आपका?
12: जी हो गया है।
13: तो वैसे साजिया जी मैं आपको एक बात बता दूं कि
12: जी जी
13: आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
12: माशाल्लाह आपको ही तो आज बहुत प्यारी है। आप तो बताइए सब बढ़िया है ना?
13: जी जी सब बढ़िया। तो साजिया जी क्या है आपकी आपकी फरमाइश?
12: आज की फरमाइश आज का फरमाइश है ना तो है राजा तो हर बोली है मिठाई में हम लागे।
13: नीतीश पांडे की आवाज में है?
12: हाँ शायद में वही वाला गाना सुनाना चाहती हूँ।
13: अच्छा जी तो क्या आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन में गाना?
12: हाँ हाँ बिल्कुल
13: सुना दीजिए।
12: की राजा तो हर बोली है मिठाई में हम लागे। आपको ना ही आता है गाना?
13: अच्छा कोई बात नहीं है लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ना आप गाना सोच के रखिएगा हम आपसे गवाएंगे। ठीक है
12: सुनिए ना दूसरा दूसरा गाने का दे।
13: जी बिल्कुल
12: चलिए गाते हैं।

0: चलो
1: वाह सादिया जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया।
0: थैंक यू।
1: तो सादिया जी जो गाना बताई थी वो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
2: सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सुनील भाईजान को और लिसनर को और मेरी भाभी है चंदा, उनको भी सुनाना चाहती हूँ। दिलीप राम भाई को, शबनम को, गुड़िया को, रोशनी को, मीसा भारती एंड मीसा चौहान, देहरादून वाले भैया को और समीर भाई को, आजाद भाई को, कमरान भाई को और सुनने वाली और लिसनर को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके सादिया जी, तो चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम असलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है
0: स्वागत है बोलता ने रमा जी प्रसाद
1: जी जी। का हाल चाल बा?
0: हाल चाल ठीक बा, हम तक बहुत भाई बा। गाना सुना दी
1: हूँ
0: बनवारी हो हमारे बलमा जवान।
1: गाना रुआ गा के बता सकते हैं दुलहिन?
0: अच्छा पहलिया उठल बनवारी हो बलमा हमारो जवान।
1: अच्छा, और क्यों के सुनाए के विचार गाना?
0: जितना रेडियो सुनता सब कुछ सुनिए।
1: गाना हम प्ले करते
0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 99393-65923।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
0: हेलो मैम नमस्ते
10: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के फ्री रेडियो 90.4 FM
0: जी। मैम धन्यवाद। मैम पास बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, और मैम वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है
10: जी? मौसम बता दूँ कि धूप निकला हुआ है
0: जी जी जी, बारिश हो रही नहीं है, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है। हम तो सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं मैम, मैं MP से
10: जी जी जी। और बताइए आप ठीक ठाक हैं?
0: जी जी बस बैठे थे मैम, बस ठीक है मैम। अभी तो चाइना आपका हो गया है, आपका मैम?
10: जी जी मेरा भी हो गया
0: जी मैम। तो आज सरवाइज बता दूंगे
10: जी, बिल्कुल बता दीजिए।
0: फिल्म परदेश का गाने के बोल है, नहीं होना था हो गया मुझे प्यार, यही सुनवाएंगे। और कितना रेडियो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं और सुनते हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका रेडियो रिमझिम, सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। दोस्तों को फरमाइश अपनी फरमाइश शामिल हो जाता है तो बहुत अच्छा।
10: आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए सुनिए तो फिर आपके गाना को हम प्ले करते हैं।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम में।
0: जी सलाम मैम, कैसे हैं?
1: जी वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक बन।
0: जी और सब खान नाश्ता पानी हो गए?
1: हाँ हाँ हो गई। आज आवाज में चेंजिंग कैसे आ गई जी?
0: चेंजिंग ऐसे आ गई कि भोजपुरी बाज बोलता नहीं है वजह से।
1: अच्छा,
0: कुछ नहीं है, रंगों से भोजपुरी में बात करनी।
1: हाँ हाँ वैसे रघु बड़ा अच्छा बोल लेता नहीं।
0: जी मैम, कोशिश तो करता नहीं भोजपुरी बोलने के।
1: हाँ हाँ अच्छा लागत है।
0: जी मैम, रंगों से आज तक मतलब भोजपुरी में बात ना भे रहा।
1: हम तो कंफ्यूज बनी क्या आवाज में अचानक से चेंजिंग कहाँ से आ गई। खाली तो आपकी फरमाइश कब आ रहा हूँ?
0: फरमाइश से पहले बताइए नाम कब आ रहा
1: है। राहुल नाम बता दी सरस्वती ना।
0: जी चलिए सही बताइए, लेकिन सोच बताइए। जी मैम, तो बताइए कैसा लगा था भोजपुरी में और गाना की फरमाइश करिए।
1: जी जी रघु, आप भोजपुरी में बोलते हैं तो बहुत ही नीक लगा था।
0: उम्मीद करता नहीं सभी दोस्तों की अच्छी लगी।
1: जी जी लोग
0: तो गाने का फरमाइश वाले दुल्हनिया से गाने की बोल रहा है। उदित नारायण का आवाज बा, गाने का बोल रहा हो गया है तुझको तो प्यार सजना। चलिए मैम, तो ये वाला गाना बताइए, गाना कैसा लगा?
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा बा। और ये बताइए गाना क्यों के सुनवाए की चाहत बानी?
0: सुनवाए सभी रेडियो दोस्त के बाशल रघुआ के बाद कहा की रघुआ का अच्छा लगे। उम्मीद करता नहीं गाना बहुत अच्छा बा।
1: जी जी चलिए ठीक बा, तो फिर अब गाना हम प्ले कर पानी।
0: ओके मैम
1: जी,
0: बाय मैम,
1: बाय। के साथ रेडियो 90

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: Hello, hello, hello, hello. हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
10: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
11: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
10: बस बढ़िया है, रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
11: चलिए
10: जी,
11: तो और बताइए, खाना वाना हुआ?
10: हाँ हो गया ना।
11: चलिए बढ़िया, तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
10: जी मैडम, पिक्चर का नाम है हम और गाने के बोले कागज कलम दबा दिला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
11: जी गाना तो बहुत ही अच्छा है
10: जी, और कुछ दोस्तों को भी याद करना चाहूंगा जो उसके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
11: जी बिल्कुल
10: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है, अमर सिंह गिल है दिलवाली पठार से, और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिचिया से, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
11: ओके सुनील जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
10: ठीक है ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिन 90.4 असम।
1: नमस्कार बेटा। मैं
0: जी नमस्कार
1: सचिन कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: जी। सचिन जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अभी तो मेरा गांव पड़ेगा बिहार में, अभी मैं पुणे में हूँ, पुणे में काम करता हूँ।
0: अच्छा जी, तो सचिन जी क्या आप हेलो मैचवेस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, बहुत बार जुड़ चुका हूँ।
0: अच्छा जी,
1: जब
0: तो
1: मेरे को टाइम मिलता है तो जुड़ता हूँ, अभी 1 महीना बाद जुड़ रहा हूँ।
0: अच्छा जी
1: हाँ, मेरे को टाइम मतलब कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं है मेरे,
0: जी
1: आज छुट्टी पे हूँ तो सोचा जुड़ जाऊँ।
0: जी जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: काम करते हैं वेल्डिंग का, आर्गन वेल्डिंग।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी की बात है। तो और बताइए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: गाना सुनना है मेरे को छठ पूजा का, कोई भी पवन सिंह का आवाज में।
0: जी, और गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपको जितने भी रेडियो सुनते हो सभी श्रोताओं को,
0: ओके जी। वैसे तो
1: अभी
0: सचिन जी, आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर एफएम के माध्यम से?
1: मोबाइल ऐप के जरिए मेरे को जब टाइम मिलता है सुनता हूँ, नहीं टाइम मिलता है नहीं सुनता। मेरे कंपनी मतलब मोबाइल अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था उसके बाद बंद करती है। ठीक
0: अच्छा चलिए, फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: है, धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
6: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
5: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
7: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ है और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: अब देखिए एकरा बाद वाला कहानी आठवां भाग आठवां कैसेट में मिली आप सबके सुने के। देखी हे मामी
2: कहा
1: देखा इतना हम सजाई सहनी पति जी का थे लेकिन वहां के तनिको हमनी के बात ना मननी है। हमरा के मारते पीटत बहनी है मामी हम का करी
2: का कहे। हे हेमंती हम तो समझाते बानी लेकिन बिरजाभार मान तो नहीं खान तो हम का करें।
1: हे मामी तनि और समझाओ वहां के
2: समझाओ तनी बाबू
1: का हा?
2: ए भगना बिरजाभार
1: हाँ
2: अरे सुन लो मत मारो तू अपने ब्याही के तारे खातिर जितना वो परिश्रम सहले बड़ी शायद केहू औरत ए दुनिया में ना सह सकेला मत भगावा उनके।
1: सुन लो हम जितना कहा तनी उतने कर मामी आरे जल्दी से लिया के हो

0: भाभी हाँ कहा देख तारू इतना ही के मारा तानी इतना सजाई कर तानी लेकिन का करी हम
1: ए हेमंती
0: का
1: चलो अबे जैसे हमने के चल जा
0: चला
1: छोड़ दे इनके बाबा
0: हाँ
1: लेकिन ये तरह ना चल जाए
0: हाँ
1: जितना सासत हमरे भगना बिरजा भार के पहले बारी से हिरिया जिरिया
0: हाँ
1: उतने हम हूँ करम तबे जैसे घर चलो
0: हाँ बड़ा सासती हेली केवली कैले बारी से एखनी के जब तक हम लोग के सासत ना कर जाई तब तक दिन में चैन नहीं थे
1: हाँ ये हेमंती देखो अब हम जादू के बरखा बरसाओ तनी एक राज के अंदर
0: अच्छा
1: देखो एक बात से का करता
0: पहला जादू चलाओ मामी पहला जादू चलाओ

0: अरे बाप रे बाप, अरे होई देख हमी का सुतरणी अच्छा कुछ नहीं किसे जानन। अरे बाप रे बाप, हो दे तरे, अरे उ तो हेमंती हो, आ हो देख सातो सौरी हो, ई त एक हमी से टक्कर ले जा तरी सा।
1: अरे बाप रे बाप, ये बहिन हई देख ले, हई देख, हई पूरा पानी से हई अपन पूरा शहर डूबे लागो।
0: अरे तमाशा, अरे हम लोग के कमाई ले जाई, हम लोग के अपन जादू चलाओ, जल्दी मार अग्नि बाण, ये पानी समाप्त हो जाओ।
1: एक हम मारते हैं अपन अग्नि बाण, एक दो अब जे तीन।
0: अरे बाप रे बाप, अब तो खत्म हो गई।
2: अब इन्हें हेमंती अमामी फिर दोबारा जादू चलाओ तालो कौने तरह से। अरे दूसरा

0: अरे हमारे दहिया में तो बेचैनी हो गई दादा, बेचैनी छाप दलबा हो दादा।
1: अरे तनी तन गुजन भाई के भेद दोनों को काटा सो
0: भाई का हो। अरे बाप रे बाप, यही से हम कहत रहनी है तोरा से कि देख ओ कनी से मत अझुरई है, ओ कनी से मत टपर ली है, लेकिन ते मन ले हा नाही। अब तो बताओ हमारा दहिया में उ छनर बर गेल।
1: अरे बाप रे बाप, बड़ी जोर बुझा तरी से रे। अरे बाप कु जगह है अगर बड़ी से
0: छर तू हम जरूर बचाओ तरीके के
1: मार।
0: एक दो और जे
1: ये तो बच भी नहीं जाने दादा।
0: अरे बाप रे बाप, हे भगवान हे भगवान, कोनो तरह जान बच।
2: मामी मामी देखा ओहु जादू से ही बच गई सा, लेकिन कोनो और ही जादू चलाओ जान के कनी के मजा आ जा।

0: मामी तू लो मारा है कोई हम कहीं लाइल बनी मारा तो
1: अरे तोरा भी हता घरे
2: तनी के बड़ा अपनी के जादूगर बनत रहल हसन
1: अरे दादा हो दादा अब छोड़ दे जा
2: हो ना सकिले
1: हां नहीं अब छोड़ दे जा हमनी के मार दे शहर
2: छोड़ ना सकिले
1: नहीं नहीं
2: ए तरह छोड़ा
1: अरे बाप हो बाप
2: ए हनंती
1: अरे दादा देखा तारू का हो बोलो तारू अरे बाप रे बाप भाई पीजी के चमड़ा वो कच गई
2: सुरे हनंती
0: का
2: ए तरह रेखा छोड़ के
0: हां
2: देख ढेकुल हो लौकता
0: हां
2: ठीक न
0: हाँ
2: जौन पिछला भाग वाला लादी बोला ला ओमे कनी के लंगटे टांग
0: मामी अबे ढेकुल पर मत टांग अबे जा नीमक ले आओ आई कनी के पीठ पर दर जौन तरह से हमरे पति देव के इकैले वाली सा वही तरह से
2: वही तरह कर ही कर
0: हाँ।

0: हम तो चाहतनी कि मेहरारू के अगर पीठी पर नमक दरिए तो मजा ना आई आखिर में बिरजा भारे खातिर दीवाना रही सन कह दे तनिक ये भगना बिरजा भार तनिक पीठी तो खूब मलत एक बुझा जा हे बाबू भगना बिरजा भार आओ ना एक पीठिया पर तू ही मल
1: हम ना छू सकिले
0: ना छू ना भले तहार जान केहू ले ली ठीक बा
1: हाँ।
0: लेकिन तू ना करब
1: ना
0: हट फर के हट
1: हाँ।
0: हम मर तनिक पड़े रहे धके
1: मल मालूम
2: अरे बाप हो बाप
0: मजा आवत
2: अरे दादा अब का होई हो अरे नी बक तो बोला हम पीछे पर है दादा अरे अब तो नंग तो परान जाता
0: कैसा लगा तारे कहनी के
2: अरे बाप हो बाप अरे दादा हो दादा अरे दादा दादा हो दादा हो दादा अरे बाप हो बाप अरे अब तो हमार पीठ फटने लगल हो दादा छोड़ा हो अब अरे दादा काई में जर ले बंदा मक दारा तारू ये दादा बाप हो बाप हो बाप रहे दो अब रहे दो
0: अरे
2: बाप हो बाप
0: अच्छा ठीक बा ए तरह तो निक रहे दे मैं छोड़ दे हां
2: हां अभी का करबु ये दादा बड़ा सब सब कहलू
0: ए हमंती
1: हां
0: ई कहती है का कि हमनी के छोड़ दो छोड़म हमे तरह
1: नाम हम ये तरह मत छोड़ दो
0: सती सारे होवे
1: हां
0: हम ढेकुल में कनी के टांग
1: सही कहत
0: है लंगटे टांग ए बुदरी के लंगटे टांग
1: हाँ एकनी के जीवन भर याद रही जे ही आई जाई रास्ता से उहे देखी कि हाँ केहू के साथ ही गलत काम कैले रही है सब
0: तब एकनी के सजा ये तरह
1: हाँ
0: टांग ऊपर
1: अरे बनिए के

0: मामी जितना जितना सजाई के बड़ी से हमरे पति के सब हमरा मालूम बा कि का कैले बड़ी
1: सा। तो उतने सासत तो हम कर रहा रानी।
2: हाँ। अरे बाप हो पा

0: हाँ। अब तो ये टांग धनी जाए कनिक है
1: हाँ।
0: अब चले जा से चलल जा
1: हमनी के चलल जा
0: हाँ।
1: इतना जल्दी से चल जा
0: तब का कह जाए
1: अरे कनिक और सासत कल चाहत रहल
0: बताओ कौन कौन चीज कर रही है
1: लेकिन चल अब तो कनी खातिर कम ना भइल
0: हई कम बरे
1: हाँ
0: ढेकुल में बांध के टांग देले बनी जा उहो लंगटे एकनी के कम बेइज्जती बा
1: ई तो बात सही बा एकनी के बड़ा बेइज्जती भइल लेकिन चल अब हमनी के चलल जा अब जैसे सातो सौरी आ हेमंती दोनों जने अपने घर के गइलो अब जो बिरजा भार से अब पूछा तने अपने गुरु से कि हे गुरु एकरा बाद हम कहाँ जाई आप देखी यही जो जो ढेकुल में टंगाइल वालो यही मुसाफिर आई वह देखी कि हाँ इके के हा आ तो हेवली केवली ई जादू गिरनी रह लो अब देखी बिरजा भार सुमिरा ताने कौन तरह से
2: अरे सुनब तो सुनब गुरु

0: चेला।
1: हाँ गुरु।
0: बताओ कि अब ते हमरा के काहे के बुलावले है।
1: हे गुरु, अब यहाँ से हम कहाँ जाई? तू सही सही बता दो, केकरा बाद कौन शहर पड़ी?
0: एजा के कुल तमाशा ते देख लले।
1: हाँ गुरु, बहुत सासत भइले।
0: अब कहतले कि अब हम कहाँ जाई?
1: हाँ
0: सुन ला जोगी बिरजा भार, अब एजा से तू कहाँ जाइब? आगे जो ही बढ़ब, थोड़े दूर आगे और जाइब।
1: हाँ
0: तो ओजा जमुना गढ़बा।
1: अच्छा
0: ओजा जल जा, ओजा तो एक ठो खटके बा, लेकिन ओजा से कोनो तरह निकल जाइह।
1: हे गुरु,
0: तू जहाँ के
1: एकरे बाद जमुनापुर शहर पड़ी।
0: हाँ
1: अच्छा हे गुरु, बहुत बढ़िया राय दल, अब हम जी से जाते नहीं। अब जो गिरजा भार अपन झोरी के मंडल छोड़े बन आ कोने तरह से जा रहा बने,

0: आप देखें कहां पहुंचो तरन,
1: जमनीपुर शहर में।
0: हाँ भौजू,
1: भौजू के रानी जनबाड़ी जमनीबाड़ी,
0: अब वही शहर में पहुंचा ताना। देखा ताने कितना खूबसूरत शहर बा, खूबसूरत शहर बा। वही जू जाके
1: एगो बगीचा में अपन आसन लगाओ तरन, आ कौने तरह से
0: जब आसन लगा के बैठल बड़न
1: तो देखी
0: जमनी के एगो लौड़ी बिया,
1: उ लौड़ी के भेजतिया जमनी की जा
0: पानी भर के लेके आओ।
1: आबो जी से लौड़ी
0: वही जो आसन लगल बड़ जहाँ इनार बा, आ वही जो यद पहुँच तल। ए लौड़ी
2: का हो,
0: जो त पानी भर के ले आ अपने बगीचा से।
2: ठीक बा, हम जाता नहीं।
0: जा।
2: अरे बाप रे बाप, हम काई देखतनी कि आज हमरे इनार पर ए बागीचा में एगो कितना सुंदर जोगी आके बैठल बने। इनकरा के तो देख के हमार मन एने उने होता।
0: आप देखे के वो जो अपन खजड़ी बजाओ तरन, हाँ का कहो तरन। हाँ वो जो आसन लगा के एगो भजन सुनाओ तरन कौने तरह से। का कह तरन अपन खजड़ी निकलन आ निकाल के बजाओ तरन कौने तरह से।
3: अरे भैला फकीरवा

तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98 527 88 291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84 28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ, फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत, हंसत रही मुस्कुरात रही, नमस्कार

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूरे, बिहार समेत देश भर में विकसित भारत संकल्प सभा और संकल्प ज्योति यात्रा का आयोजन। श्री मोदी ने कहा, सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के पर्चे अस्वीकृत, 152 उम्मीदवारों का नामांकन पाया गया वैध। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा की, साकिबुल गनी को मिली कमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के आज 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर देश भर में विकसित भारत संकल्प सभा और संकल्प ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: राजधानी पटना समेत जिला मुख्यालयों में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पटना के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज देश हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
3: विकसित भारत बनाना है तो समृद्ध बिहार बनाना है और समृद्ध बिहार बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। इसलिए आज सभी लोग मिलकर विकसित भारत संकल्प सभा के माध्यम से जरूर संकल्प लेके जाए कि मोदी जी के 25 साल के शासनकाल में गुजरात बदला, भारत बदला और आगे विकसित भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है। इसलिए सब लोग संकल्प लेकर जाए, इस भारत और बिहार को बदलने में सब लोग योगदान देते रहेंगे।
0: संकल्प सभा के बाद मुख्यमंत्री ने सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा राजधानी पटना के विभिन्न मार्गों से गुजरी। जिला मुख्यालयों में भी सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अरवल में नित्यानंद राय और बेतिया में सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, गया जी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण, किसान, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यों से देश को नई दिशा मिली है। वहीं शेखपुरा में राज्य सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव, औरंगाबाद में रमा निषाद और गोपालगंज में मिथिलेश तिवारी संकल्प सभा और संकल्प ज्योति यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के गांधी मैदान में सेवा के रंग राष्ट्र के संग अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत रंगोली और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए गए सेवा, समर्पण, सुशासन और विकास कार्यों को पेश किया गया है। जेब में नगद पैसे न हो तो कभी छोटी सी खरीदारी भी मुश्किल हो जाती थी। आज मोबाइल निकाला, यूपीआई खोला और कुछ ही सेकंड में भुगतान। यूपीआई ने भारत में भुगतान का तरीका ही बदल दिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष श्रृंखला में आज यूपीआई पर एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई से 1,78,00,000 लेन देन हुए थे। 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया, यानी करीब 10 वर्षों में 13,000 गुना से ज्यादा की वृद्धि। आज भारत के डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 84% है और रोजाना औसतन 76 करोड़ लेन देन होते हैं। यूपीआई की खासियत यह है कि किसी भी बैंक और किसी भी यूपीआई ऐप से आसानी से भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करने वाले व्यक्ति पर कोई शुल्क भी नहीं है।
5: अभी कुछ ही दिन पहले 25 अगस्त को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।
4: इस बदलाव की कहानी बिहार के लखीसराय के ऋषि के जीवन में भी दिखाई देती है। पहले छोटे छोटे भुगतानों के लिए नकद रखना जरूरी था, अब मोबाइल से कुछ ही सेकंड्स में भुगतान हो जाता है।
6: मेरी जिंदगी में यूपीआई आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ कि अब पैसों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। पहले कैश रखना पड़ता था, छुट्टे पैसों की टेंशन रहती थी, लेकिन अब मोबाइल है तो पेमेंट है। चाहे चाय पीनी हो, ऑटो का किराया देना हो, किसी दोस्त को पैसे भेजने हो या घर पर पैसे ट्रांसफर करने हो, कुछ ही सेकंड में काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल छोटे से छोटे दुकानदार भी यूपीआई रखते हैं, तो मेरे लिए यूपीआई ने रोजमर्रा की लेन देन को बहुत आसान और कन्वीनियंट बना दिया।
4: यूपीआई ने भुगतान को आसान बनाया और डिजिटल सुविधा को आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाया। जेब से मोबाइल तक पहुंचा ये बदलाव डिजिटल भारत की एक बड़ी कहानी बयां करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 12 उम्मीदवारों के पर्चे अस्वीकृत कर दिए गए, वहीं 152 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। एक रिपोर्ट।
1: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 4, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 3 और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 1 उम्मीदवार का नामांकन पर्चा अस्वीकृत किया गया। दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से सभी 40 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए। जांच के बाद पटना स्नातक से 18, तिरहुत से 17 और कोसी स्नातक से 15 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। दूसरी तरफ पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 3 और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 1 नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 19, सारण से 19, तिरहुत से 11 और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 उम्मीदवार के पर्चे वैध पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित है। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
0: एनडीए के घटक दलों की पटना स्थित लोक सेवक आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में भाजपा, जदयू समेत अन्य सहयोगी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में विधान परिषद चुनाव की रणनीति और आपसी समन्वय पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ रेपो रेट बढ़कर 5.5% हो गया है। 4 साल में रेपो रेट में यह पहली बढ़ोतरी है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से बैंकों की कर्ज दरें बढ़ सकती हैं और इसका असर गृह, वाहन तथा व्यक्तिगत ऋण की ईएमआई पर पड़ने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का लक्ष्य भविष्य के वैश्विक स्तर के भारतीय उद्यम तैयार करना है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। साकिबुल गनी कप्तान और हिमांशु सिंह उप कप्तान होंगे। बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की देखरेख में 17 खिलाड़ियों को मुख्य टीम में और 6 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय के तौर पर चुना गया है। बिहार अपना पहला मैच 11 अक्टूबर को राजगीर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेलेगा। राजगीर में यह पहला रणजी मुकाबला होगा। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया है। बिहार की टीम ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इस सफलता में शेखपुरा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बारिश होने से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। सीतामढ़ी के चर्चित दिनेश यादव हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रीगा परसोनी रोड पर घेराबंदी के दौरान तीनों मोटरसाइकिल से भागने लगे और पुलिस टीम पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में तीनों अभियुक्त घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज संयुक्त रूप से औरंगाबाद जिले के कोह प्रखंड के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। शेखपुरा के मिशन थानाध्यक्ष आदित्य रंजन को मद्य निषेध कानून के उल्लंघन में निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। सुपौल के छातापुर बाल विकास परियोजना कार्यालय में रिश्वत लेने के वायरल वीडियो के आधार पर आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका संगीता कुमारी और आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूरे, बिहार समेत देश भर में विकसित भारत संकल्प सभा और संकल्प ज्योति यात्रा का आयोजन। श्री मोदी ने कहा, सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के पर्चे अस्वीकृत, 152 उम्मीदवारों का नामांकन पाया गया वैध। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा की। साकिब उल कनी को मिली कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा के आज 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर देश भर में विकसित भारत संकल्प सभा और संकल्प ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: तू जो है,
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023।

0: हाय।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90

0: 9066731।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
2: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
1: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रेस परिषद को आवश्यकता है सहायक अनुभाग अधिकारी की, एक पद OBC श्रेणी के लिए तथा 2 पद अनारक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.presscouncil.nic.in। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का पद भरा जाना है। वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें समय समय पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही रहेंगे। इच्छुक और पात्र अधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट J में इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट dor.gov.in/vacancies। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, कनिष्ठ इंजीनियर, नर्सिंग सहायक, कनिष्ठ ऑफिस सहायक, कनिष्ठ सहायक MS और परिचारक। कनिष्ठ ऑफिस सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 10 पद उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में फोरमैन इलेक्ट्रिकल का एक पद रिक्त है, इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों, आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तों, सेवा की शर्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि का विवरण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.ninpune.ayush.gov.in। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय आमंत्रित कर रहा है अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य आवश्यक शर्तों और निर्देशों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट rdsdetelangana.dgt.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
11: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
11: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
11: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।
16: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
17: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
16: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
17: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
18: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
17: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
18: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
17: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
18: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
19: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
20: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
19: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
21: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
22: रेडियो रिमझिम।
21: सुनो दिल से।

0: क्या है बाबू?
1: पहले जो था सो था, आज से मेरा नाम बाबू।
0: बाबू?
1: हाँ दुर्गा, जब भी तुम बाबू कह के पुकारती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी? जानती हो जब भी तुम हंसती हो ऐसे लगता है जैसे कि चेहरे से रोशनी फूट रही है। तुम बहुत खूबसूरत हो दुर्गा।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
11: प्रसाद क्लिनिक,
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
15: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
15: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा।
16: समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
13: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
16: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
13: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
16: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
17: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
16: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
18: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: It's so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही से मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions.
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है. साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं.
6: एंड द बैंक रेट टू 5.75%.
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है. आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है. भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया. इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया. वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है. एक रिपोर्ट.
8: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है. उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया. दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है. उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है. ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे. और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा. उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की. भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की. कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है. रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे. स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की है. और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक. और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण.
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है. ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान.
11: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर. सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट.
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में.
11: आइए खादी अपनाइए. जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं. क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है.
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज. हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर. किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं.
11: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू.
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान.
11: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
11: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
16: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
16: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
16: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।

0: वीडियो हुआ वायरल और चंदा वसूली में एक ट्रक पर पथराव, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा को लेकर 25 वर्ष पूरे होने पर गोपालगंज के लोगों को संबोधित किया। इसको लेकर देश भर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, गोपालगंज में भी पार्टी के तमाम नेता इस सेवा संकल्प अभियान को लेकर काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई और विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस सभा को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक और सराहनीय कदम इसे बताया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवा से राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाते हुए प्रधानमंत्री ने हर चुनौती को अपनी तपस्या, साधना और अटूट संकल्प शक्ति से अवसर में बदला है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र निर्माण की इस महायात्रा को अभूतपूर्व गति मिली है। मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और सामर्थ्य भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं, हम सक्षम हैं और हम मिलकर विकसित भारत के सामूहिक स्वप्न को साकार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 140 करोड़ सपनों का, असीमित ऊर्जा का, अनगिनत आकांक्षाओं का राष्ट्र है। जब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। हम बढ़ेंगे तो देश के लिए, हम सीखेंगे तो देश के लिए। इस दौरान भाजपा के तमाम पार्टी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
1: जो भी जिम्मेदारियां मिली मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योगः कर्मसु कौशलम्। गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर। निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है।
0: आज भाजपा के भव्य कार्यक्रम को लेकर बंजारी नवनिर्मित बाईपास चौराहा को भी सजाया गया था। वहां भी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बंजारी बाईपास चौराहा का नाम रखने को लेकर विवाद होता हुआ भी नजर आया। इस नवनिर्मित फ्लाईओवर के पास बनने वाले चौक के नामकरण को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों ने इस चौराहा का नाम अपने अपने तरीके से रखने की मांग की। सभी ने अपने अपने स्तर से इसका तर्क भी दिया, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ से इस चौक का नाम सेवा ज्योति चौक रखने की बात कही गई, तो वहीं MIMIM के नेता अनस सलाम ने इस चौक का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश रत्न APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का मांग किया। तो वहीं कुछ लोग अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने की भी चर्चा करते हुए सोशल मीडिया पर देखे।

0: गए, परंतु सर्वाधिक चर्चा इस चौराहे को लेकर काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखने की सामने आई। भाजपा के कार्यक्रम के बाद स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे की धर्मपत्नी इस चौराहे पर पहुंच गई और वहां उन्होंने धरना दे दिया। उनका कहना था कि इस चौराहे का नाम गोपालगंज के जन नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखने की सभी तैयारी पहले से ही की गई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का भी उन्होंने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने भी स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर मूर्ति बनाने और उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की है। साथ ही अंचलाधिकारी का भी एक पत्र उन्होंने जारी किया, जिसमें बंजारी बाईपास चौक का नाम स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखते हुए वहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही गई है। इन दोनों पत्रों के साथ उन्होंने एक आवेदन लिखकर गोपालगंज के सदर SDM डॉक्टर प्रेरणा सिंह को भी सौंपा, जिसमें उन्होंने पहले से वहां स्वर्गीय काली पांडे के पोस्टर लगाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में स्वर्गीय काली पांडे के पोस्टर को यहां से हटा दिया गया है और अब सत्तारूढ़ दल के नेता स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम को बदलकर इस चौक का नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन किया कि गोपालगंज के सबसे मशहूर ख्याति प्राप्त रहे सांसद और विधायक स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे, जिन्होंने देश और गोपालगंज के लिए काफी काम किया है, उनके नाम से इस चौक का नाम रखा जाए। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु विवाद को देखते हुए लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर अंबेडकर भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और ICDS के कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न उपलब्धियों को लेकर स्टॉल भी लगाया गया था। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने स्टॉल का निरीक्षण किया। मंच संचालन संजय गुप्ता ने किया। जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए आंगनबाड़ी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सभी बच्चों के साथ जिला पदाधिकारी ने फोटो खिंचाई, बच्चों को खिलौने इत्यादि देकर सम्मानित किया। साथ ही आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका, जिन्होंने पोषण माह के अंतर्गत बेहतर योगदान दिया है, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
1: तो पोषण माह का समापन किए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि हर साल में सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है, आज आखिरी दिन है उसका। हम जो विभिन्न गतिविधियाँ करते हैं, मुख्य रूप से इसमें यह रहता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं, इनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इनके लिए जो बेसिक सुख सुविधाएँ की जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और प्रथम 1000 दिन जो एक बच्चे के लिए होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, कि उसी 1000 दिन में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो आगे चल के इसका ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाता है। तो हम लोग उस बात को ध्यान में रखते हुए पोषण माह का हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन कराया था और आज उसी का समापन हुआ।
0: बैकुंठपुर प्रखंड के लगभग 10 मजदूरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूर अपने आप को बैकुंठपुर प्रखंड का बताते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम में बेच देने की बात कह रहे हैं। मजदूर वीडियो में साफ कहते हुए देखे जा रहे हैं कि उन्हें एक व्यक्ति द्वारा वहां मजदूरी के लिए ले जाया गया था, परंतु 1 लाख रुपए में वहां उन्हें बेच दिया गया। अब उन्हें ना तो भोजन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें सही मजदूरी मिल रहा है और दिन रात उनसे काम कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए मजदूरों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से सहायता करने की गुहार लगाई है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, परंतु यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 10-12 मजदूर एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा है, उसे आप भी सुनिए।
2: देखो लो भाई, हमने के दिगवा दिगोली बैकुंठपुर घर आ गोपालगंज के डोमा हाता के धर्मेंद्र यादव आके हमने के 1 लाख में बेच के 10 आदमी के भाग गए बा। हमने के ना खाए के ठीक बा ना थी के, आज जबरदस्ती हमने से ही काम कराओ तरह से जो पैसा ले ले बड़ा सा भाई। ऐसा वीडियो शेयर कर लो जो हमने के कॉल जाए से भाई,
3: कंपनी बोला दिया जाए तुम लोग पैसा देकर जाओ। हाँ। हम तुम लोग पैसा दे,
4: पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा,
2: पुलिस प्रशासन एस भी कुछ सब हमारा है,
4: विधायक MP कुछ नहीं करेगा,
2: विधायक MP सब हमारा है, हमारे गांव का मिस्ट्रेस बाबा से अनुरोध है, शिक्षा मंत्री से, जो हम लोग को यहाँ से ही काला जाए।
0: पंचदेवरी प्रखंड के नटवा में महावीरी अखाड़ा मेला को लेकर डीजे संचालन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें अंचलाधिकारी के आवेदन पर दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों से डीजे को भी जब्त किया गया है। हथुआ के एसडीपीओ ने कहा है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कुचायकोट में नेशनल हाईवे पर चंदा वसूली के दौरान एक ट्रक पर पथराव करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक के चंदा देने से इनकार करने पर ईंट पत्थरों से उस पर हमला कर दिया गया, ट्रक के शीशे को तोड़ दिया गया। इस मामले में 20 अज्ञात समेत एक नामजद पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और त्वरित कार्रवाई करते हुए सूरज कुमार नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और उनकी पहचान को लेकर भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। थावे थाना की पुलिस ने रामचंद्रपुर गांव में हुई एक चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए चोरी के मोटर पंप सेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि माधोलाल मठिया निवासी अमित कुमार को पुलिस ने चोरी के मोटर पंप के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गाय की चोरी की घटना में भी दो अन्य आरोपियों की संलिप्तता की पुलिस जाँच कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। लोक शिकायत निवारण के मामलों में दो अंचलाधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि भ्रामक रिपोर्ट देने पर बरौली और कुचायकोट के अंचलाधिकारी पर 2,000 रुपए का अर्थ दंड जिलाधिकारी समीर सौरभ ने द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान की। अतिक्रमण मामले में गलत तथ्य देने पर अधिकारियों को फटकार लगाया गया और भविष्य में दोहराव पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 5 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने आकाश चौहान, विजय चौहान, ये दोनों राजेश चौहान के पुत्र हैं, और एक महिला, ये सभी अमवा घाट थाना विजयपुर के निवासी हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और एक दूसरे मामले में एक महिला और एक कृष्णा चौहान जो बलराम चौहान का पुत्र है, ये भी अमवा घाट थाना विजयपुर के निवासी हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से हुई इस 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हैं। घायलों में चंदन राम मरवा गांव की सलोनी कुमारी और आशा खैरा की अनामिका कुमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हथुआ के चैनहा पोखरा में गंदा नाले का पानी गिराने को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 13 हथुआ नगर के स्थित चैनहा पोखरा में गंदे नाली के पानी को गिराने की तैयारी चल रही है। वहाँ नाला निर्माण कर तालाब में गिराने को लेकर लोगों को आशंका है, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस तालाब के किनारे छठ घाट भी बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन और भी उग्र है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने कहा कि तत्काल अगर यहाँ नाला को गिराने के लिए जो योजना बन रही है उसे नहीं रोका गया तो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 293 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया और एक कार को जब्त किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई शीतल बरदाहा नहर पुल के पास हुई है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस गाड़ी का पीछा कर रही थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक का पीछा किया लेकिन वह भागने में सफल रहा। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से 293 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसके बाद गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जादवपुर थाना की पुलिस ने 30 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सुनील यादव पिता रामजी यादव, जो जादवपुर के नवादा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जनता को संबोधित। बंजारी बाईपास चौक।

0: के नामकरण पर विवाद शुरू, पोषण माह के समापन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश में जिले के 10 मजदूरों के फंसने का वीडियो हुआ वायरल, और चंदा वसूली में एक ट्रक पर पथराव, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।
15: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी

0: radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करें तो आप पुराने गाने के फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने के फरमाइश करें और नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश हम ना सुनाएं और अच्छे गाने की आप लोग फरमाइश करेंगे, तो गाने तो बिल्कुल बजेंगे। कल एक हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है संदीप, और उन्होंने मैसेज भी किए थे, कॉल भी किए थे, और गाने ऐसे गाने के फरमाइश किए थे कि हम उसको कभी नहीं बजा सकते और ना ही वो कभी रेडियो पर बज सकता है। उस गाने के फरमाइश कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी फरमाइश तो जाहिर है कि प्ले नहीं होगी, तो नहीं प्ले हो पाया। तो आप लोग गाने जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, आई एम सुरभि फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है एंड सॉन्ग का बोल है नागिन तू सपेरा। मैं नागिन तू सपेरा डेडिकेट मेरी दी को एंड आपको। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर नमस्ते, मैं राजेश प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की खुशी है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है, हम आलिशा माहिरा गोपालगंज से। तो बिल्कुल बढ़िया है, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनना है पवन सिंह का ओल्ड सॉन्ग। बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन आप कौन कहां से मैसेज कर रहे हैं अपना तो परिचय दें, फिर गाने तो हम सुनाएंगे ही। और आगे मैसेज पहुँच रहे हैं अभी, तो चलिए गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहले गाने के फरमाइश सुरभि की प्ले करते हैं, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो रेमझिम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं, उस जगह का नाम बताना है, फिर अपने गाने के साथ इंजॉय करना है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए, और सुनते रहे, बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नमस्ते, आई एम बिट्टू शर्मा फ्रॉम पिपराही से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि ऊपर वाला अपने साथ है। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय कैसे हैं आप, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पलक कुमारी बढ़िया से जुड़ी हैं। बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार जी कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है भोजपुरी गोलू राजा की आवाज़ में। स्वागत है आपका, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान से, मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने हम प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश हमारे पास जौनपुर उत्तर प्रदेश से पहुँचा हुआ है, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं राजेश जी, बीत गए जो लम्हे लौट के ना आएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम जिम 94 FM पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेज में एक पूछा जा रहा है कि सर कल मेरा गाना बजा था कि नहीं, मैं सो सुनते सुनते सो गई। तो कल तो आपके गाने हम बजा चुके हैं आलिशा मेहरा और आप नहीं सुन पाई, अफसोस रहा। और आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं तो आगे मैसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचाए हुए हैं बिट्टू शर्मा जी और गाने के फरमाइश किए हुए हैं कि ऊपर वाला अपने साथ है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे रिपीट मैसेज कर रहे हैं अजय कुमार मिश्रा जी, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब रेडियो एम जी एम 94 FM पे।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं और ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा का, मधु सरिया से राजू कुमार जी का। बिल्कुल बजेगा, थोड़ा सा वक्त दें हमें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोना भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज वीरेंद्र भैया दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओपनिंग सॉन्ग में तेरा दुश्मन सुपर दिलीप राम, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप जी, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है भेड़िया से पवन सिंह की आवाज़ में, और इस मैसेज को पहुंचाने वाली पल्लवी, तो चलिए सॉरी पलक, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 51 पे।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई गाने की फरमाइश हमारे पास हैं और आगे मिसेज भी कुछ पहुँचे हुए, तो मिसेज देखा जाए। आगे मिसेज पहुँचा हुआ है नाइस सॉन्ग, मिसेज करती हैं शुरबी। और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सही बात है सोनू बाबू कि जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, पर कैसे भाई। चलिए सोनू बाबू मेरा भी हाजिरी ले ले, लेट है भाई, अभी हम घर पहुँच कर जुड़ गए हैं, हमें याद करने के लिए शुक्रिया दिलीप भाई। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रुक सोने पाल बटर से और आगे कहते हैं कि पर पवन जी का जिंदगी अपने के प्रति गुलाम नहीं खे, सावधान रहें। बिल्कुल सही बात बा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि रानी हमरो जिंदगी नीलाम हो गई, सुपर सॉन्ग, एनर्जी आ गई सोनू भाई। बिल्कुल ऐसा ही एनर्जी लेत रही। और मिसेज करता नहीं दिलीप जी। और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, चलिए आपके गाने हम बजाते हैं। और अजय कुमार मिश्रा जी गणेश स्थान माझा से भेजे हुए हैं, गाने का नाम देते हैं आंगन में बाबा दोरे पे माँ कैसे आऊँ गोरी अब तोहरी घरवा। तो चलिए सुनते हैं, यदि गाने ऐसे वैसे होंगे तो हम बीच में रोकेंगे और दूसरे गाने हम प्ले करेंगे। फिलहाल सुनते हैं।

कमाल के शौक रेडियो एमसीएम 9.4 एफएम पे सुन रहे आगे मैसेज और कमेंट करते हैं कि सुनो भाई, आजकल घर पे मिलना उचित नहीं है, बाहर ही मिल ले वही बहुत है। लेकिन सॉन्ग अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, सुपर सॉन्ग। मैसेज करते हैं दिलीप जी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा का मधु सरिया से, तो बिल्कुल आपके सॉन्ग तो

बिल्कुल आपके सॉन्ग ही बजाते हैं और इस मैसेज को करते हैं गाने को चेंज करते हुए राजू जी, और आप लोग से हम हर रोज़ कहते हैं कि आप अच्छे गाने के फरमाइश करें, चाहे भोजपुरी ही सुनना चाहते हैं तो उस गाने के फरमाइश करें जो हम बजा सकें। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और गाने का बोल देते हैं, आजा आजा सनम दिल पे तेरा नाम लिखा दूँ, सुनवाना चाहते हैं।

सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझेम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि जब अपने के परमिट मिल ही गई बात तो बाबा तो डर का है। वाह, लेकिन डर रहेला कुछ कुछ बात में। और मिसेस करता नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया, अभी बहुत सारा कुछ बात बाजे में डर लगेला। और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश रहेगा कि आपका भी गाना हम बजा दें। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं राजू जी की फरमाइश रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब और रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे बने हुए हैं और शो की समाप्ति का समय हो गया है। तो आगे अभी गाने हैं, तो आज अंतिम गाने प्ले करने का मौका नहीं, सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, अंतिम गाना यही रहेगा। आप सब बने रहें, एंजॉय करते रहें गाने के अंत तक, और हमें दीजिए आप सब जाने की इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, हम

0: आदाब, ये छे आकाशवाणी। शबीर उज जमा बोजनावी
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
1: रेडियो रिमझिम
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हमरा नहीं खे देवे के अनु।
1: ये हमार ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैली ना।

0: हाँ तो करा लोग किसानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हाँ तो करा लोग किसानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते
2: हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा बाप तोरा छोड़ गई ले हमरे अंगन वहा।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो. नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम. और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494911. जी हाँ, 8029494911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
5: हेलो.
6: नमस्ते मैडम.
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम
6: में. फोन लगा लो अभी कल लागल बा.
5: अच्छा जी.
6: हमारा फोन एक हफ्ता के बाद लागे जाल में तो बात करेंगे सर. हमें बिजी बिजी में बानी है ना, कितना फ्री पता नहीं.
5: अच्छा अच्छा, नाइस. हम कोनो बात नहीं के ऐसे बता दिया. अपन नाम कहाँ से बोला था इंडिया?
6: हम काला महीने से बोलते हैं.
5: अच्छा, नाम?
6: परमात्मा कुमार.
5: अच्छा जी. हाँ जी, बहुत काफी देर से बात फोन के लिए बानी.
6: हाँ, एक हफ्ता के बाद कॉल हम करेंगे.
5: अच्छा जी. तो हेलो माई बाजी का है ना, बोलिए. मैं तो राहुल कॉल कभी भी बात सकता
6: है.
5: जी राहुल तो कॉल बात सकता है. हेलो माय चॉइस में
6: आज शाम को ना बाजी होने लाइट में कॉल लगा लो तो सोनू सरगम गाना बजा रहे हैं. सोनू सरगम
5: गाने के
6: गाना के नाम पे सुन रहा है कॉल मिल पर.
5: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनवाई के भी चाहते नहीं.
6: रेडियो रेडियो सुनने वाला के सबके रजक है संतोष और बिजली रंजी सब कोई.
5: चलिए तो फिर राहुल गाना हम प्ले करता नहीं. जी.

0: जी
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम।
0: क्या हाल है
1: जी? हाल तो ठीक है, आप बताइए।
0: ठीक है।
1: हाँ जी, हो गया है। नाम बता दीजिए अपना।
0: उज्जवल।
1: उज्जवल
0: जिला उज्जवल।
1: अच्छा, और कहाँ से?
0: गोपालगंज
1: में। कहाँ?
0: गाना सुन रहा है।
1: जी जी, गाना हम आपको सुनवाएंगे, पर ये बता दीजिए कि आप गोपालगंज में कहाँ से बोल रहे हैं?
0: कबीलास से।
1: अच्छा, तो फिर कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: सजना तेरी। सजना तेरी।
1: और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं? ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू।
1: वेलकम। चलिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: जी आप भाई जी बोल रहे हैं?
1: नहीं,
2: आज तो मनोरमा जी का गाना हम सुने हैं। आज मनोरमा जी का बज रहा था।
1: जी जी,
2: तो आप कौन सा गाना सुनवाइएगा?
1: आप जो बताएंगे वही गाना।
2: और बोलिए जी, हमको ये खबर है, हम मनान बोल रहे हैं कपूरा से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: ताज मनोरमा जी का आज हम गाना सुने हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, पवन जटोरा मेरे संग गाए थे गुनगुन गुनगुन हवा चले।
1: जी जी, अब तो गाना सही बजा था ना आपका?
2: अभी सुने हैं, साफ तौर पर घर में बैठे हैं, मेरा गाना आया, हम सुन लिए, बहुत हुआ हमारा।
1: अच्छा जी, तो फिर फरमाइश बता दीजिए।
2: और फरमाइश मनोरमा जी, आप कोई अपने मतलब से बजाइए ना कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाइएगा? आपका मतलब सुन लिए हैं, मनोरमा जी कबील का मतलब से गाना नहीं सुना है अभी।
1: अच्छा जी,
2: कौन गाना सुनवाइएगा? यानी हमको चाहिए हिंदी गाना, में चाहिए नहीं भोजपुरी, चाहिए नहीं और कुछ नहीं, वो फिल्मी सॉन्ग होता है ना, वही हमको चाहिए। और हम तो कड़े उम्र दराज, अब बच्चे वाले गाना नहीं चाहिए, और उसी में से कोई एक गाना सुनाइए जो कि एजेड लोगों का अच्छा लगे।
1: जी जी, वैसे मैं बता दूँ तो आप बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करते हैं, तो आप ही बता दे तो ज्यादा बेहतर होता।
2: अरे मनोरमा जी के मतलब से जो हम अपना सुनना चाहते हैं, तो फिर आप हमसे कह रहे हैं गाना सुनाइए, हमको याद आता है। माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत
1: तो इस गाने की मतलब मूवी नेम आपको याद है?
2: जी जी
1: जी जी, मूवी का है
2: वो शायद ही नाम जाते हैं, किसका कौन सा फिल्म का पता नहीं, और ये शायद लता का गाना है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा ले, और मेरा कोई
1: डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
2: यही गाना सुनवाइए ना मेरा।
1: जी जी, चलिए तो यही गाना
2: याद से यही गाना सुना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी जी बिल्कुल, और डेडिकेट भी करिएगा।
2: ये डेडिकेट क्या कहा, दूसरे के नाम से किसी को अच्छा लगे तो उसके नाम से डेडिकेट है, वरना तो मैं तो अपने यादगार के हिस्से से मैं ये गाना को चूज कर रहा हूँ ना, तो अब डेडिकेट किसके रहेगा, हमारे नाम पर रहेगा है ना, और किसी का तो नहीं है जिसने लेकर के प्राप्त किया।
1: चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कैसी है आप?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम तो ठीक है मैम। तो अभी तो एक फोन लगा रहा
1: हूँ, कॉल भी लग गया, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
0: सोहिला देवी बोल रहे हैं।
1: कहाँ से?
0: पटना से।
1: सर कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना को सुना दीजिए। अनुदान में तो नहीं है फिर गाना? किसी का पुरकार बुरा है बोला है जैसा भी है मेरा पति देवता है।
1: एक बार और बता दीजिए।
0: वही गाना हमको सुना दीजिए।
1: कौन सा? एक बार और बता दीजिए।
0: गाना सुनोदान में सुंदर में गाना सुना दीजिए, कोई भी बताए है वही सुनोदान में। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है।
1: और ये गाना आप किसी को सुनवाइएगा?
0: किसी को सुनाएंगे? हम सुनेंगे, डेली सुनते हैं। आप
1: गाना आपका प्ले करते हैं?
0: जी
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM। भला

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हेलो मैम।
5: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
6: मेरा नाम सोनम है।
5: जी
6: जी,
5: नाम एक बार और बता दीजिए।
6: मेरा नाम सोनम है।
5: और कहाँ से बोल रही हैं सोनम जी?
6: मैं गोपालगंज से।
5: गोपालगंज में कहाँ?
6: बंजारी से।
5: अच्छा जी, वो सोनम जी और बताइए, क्या है आज की फरमाइश?
6: मुझे सॉन्ग सुनना था।
5: बता दीजिए
6: सॉन्ग का नाम। मैं खिसाड़ी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
5: कौन सा बता दीजिए?
6: और जो गाना है ना, किसी का दिल टूटल हुई तबे डोली उठल हुई।
5: जी जी
6: हाँ, वही।
5: तो क्या ये गाना मुझे गा के बताएंगे? ये दो लाइन
6: बस, एक नहीं मुझे याद है।
5: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
6: यस, मेरी बहन है, छोटी बहन है।
5: ओके, वैसे क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल की हैं?
6: जी।
5: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको रेडियो रिमझिम का?
6: अच्छा लगता है।
5: सबसे सुनते हैं नहीं है आप ये कार्यक्रम?
6: अभी तो फिलहाल जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से सुन रही हूँ, 10-15 दिन से।
5: अच्छा जी, वैसे कहाँ रहती हैं आप?
6: मैं यूपी रहती हूँ।
5: अच्छा जी, चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
6: जी
5: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, मैं सुरभि बोल रही हूँ, गोपालगंज जिला वाले से।
0: जी सुरभि जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मुझे तो लग रहा था कि आज कॉल नहीं लगेगा।
0: अच्छा, चलिए कॉल भी लग गया और आपसे बातें भी हो गयी।
1: हाँ, भारती मैम कैसी है?
0: जी भारती मैम भी बढ़िया है। जी जी, और आप ठीक है?
1: हाँ मैं भी, भारती कॉल के लिए बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता
1: है। आपको
0: बता दीजिए,
1: हमको
0: सुरभि जी जाके बताएंगे मुझे।
1: मुझे गाने नहीं आता लेकिन मुझे आज बता दूंगी।
0: कोई बात नहीं, जो गाना अभी बताएंगे वही गाना प्ले करेंगे।
1: हाँ खा के कहो, यही बताऊंगी। आपको मेरी बहन है चिल्ड्रेन भी उसको, और आपको भारती मैम को, मेरे सर को, जितने भी ट्यूशनर है।
0: ओके सुरभि जी,
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। तो चलिए श्री श्री के साथ आपके गाने को हम प्ले करते
1: हैं। बाय
0: जी, बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 असम में।
5: जी और कोई ना, रानी मुखर्जी जी क्या हाल चल रहा?
4: जी जी ठीक बा, अपन सही रहो, कैसे बानी?
5: हम ठीक है बानी, कोनियो के यही देर ले माने जीजू जाते ले कोई हम कोनियो तू उठे हरा जाने आप जाते लागल बटे क्या
4: करे जी को कॉल कटे ला तब तक दूसरा आ जाला।
5: हां तो इस समय में ना उठ लखरे से कोनियो के रुकत रहा मार पर चल रहा वाला वो बेचारा। अच्छा चला था कि आज बात करवा तनी रानी मुखर्जी से। तो और सब का हाल चल रहा?
4: जी हाल चाल तो सब ठीक। आप
5: बताएंगे? हम बहुत बढ़िया बानी, आप सब ठीक है? हम भी ठीक है, मान लिया सामने वाले का ठीक है, देखते और भी आदमी को खुश रहता है इंसान की। हाँ चलो, तो खुशी में खुशी है, बढ़िया से खाना खा के आई है ना, गाय की पेड़ दही का कॉल लेना है ना आपको।
4: जी जी।
5: मौसम कैसा है जी आपने?
4: मौसम बताई तो धूप निकल रहा बहुत तेज,
5: हवा चलाता की
4: ना? हवा तो बिल्कुल नहीं चलता,
5: यहाँ तो हवा दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज चलाता है, गर्माहट तो बढ़ रही है, शांत की रात्रि का टाइम भी अगर बैठे। अच्छा वो गाना बटे, जो गाना बटे, गाना बटे छोड़ी ना आचार वा हो गई हो रे या जाट ना बहर या, ये खुशी कक्कर के गाना, खुशी कक्कर के छोड़ी ना सरिया के को रहे या जाई बहर या
4: वो
5: तो कोई दे तो मैं गाय के काबा छोड़ी ना पिया को रहे या को रहे या जाई ना बहर या, ऐसा ही कुछ बात, लेकिन लय गड़बड़ा था हमारा। तो सबसे पहले अपने के बनी भारती जी बनी, अहमद भाई, कमरान भाई, अख्तरी जी, सोनू भाई और जितना कहीं सुनी वो सब तो सुनाते हैं, सब कोई जितना हमारे नाम से जाने पहचाने वाला बात सब और रेडियो जितना साथ कर सबको सुना दी। तो ये बात रानी मुखर्जी जी सब बढ़िया से अच्छी बना रही और एक स्ट्रॉन्ग बना रही और आगे के जो काम के देखत रही, ताकि फिर हमी के कॉर्नर मोड़ पर मुलाकात हुई।
4: जी जी बिल्कुल, तो चलिए फिर एक
5: साथ
4: हम प्ले करते हैं।
5: जी नमस्कार,
4: जी नमस्कार अभी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: मैं यादव हर भाषा से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं आप?
0: ठीक है।
1: वो क्या हो रहा था?
0: क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, दुकान चल रहा है, दुकान चल रहा है।
1: अभी तो कौन सा गाना सुनिएगा
0: मैडम? मुझे खेसारी का नौका गाना नहीं है।
1: कोई भी गाना, खेसारी लाल का नया गाना?
0: जी जी जी।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94 FM में।
2: नमस्ते दीदी।
3: जी नमस्ते।
2: क्या हाल है?
3: जी ठीक बा, आप बताएंगे?
2: अरे मस्त है, एकदम झटपट। क्या फोन कर लिया था आज? हम फोन का नहीं उठा, नहीं आवा, बिजी खाली बता रहा था।
3: क्या करिए अब, रघुवा से पहले लोग कॉल कर चुका बात तो काई कर सकता है इंसान।
2: नहीं 11 बजे में 5 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट तब लगा तो नहीं है तो उधर सीए चो आप जब मोबाइल जो खोल नहीं है तो एकदम जगह तो उनकी फी होता जो वस्तु बता रहा।
3: जी जी चलिए, वैसे कोई बात नहीं।
2: और सब बताएं?
3: जी सब बढ़िया बात। तो कौन सा गाना सुने मार
2: जब फोनवा कर रहा कौन याद नहीं कर रहा,
3: मतलब इतना खुश हो जाने गिर गाना ही
2: से बतिया के तारीख खुशी है मेरा। बात करके बहुत खुशी हो रहा हूँ।
3: अच्छा
2: ही बताएंगे हम
3: बता।
2: मैंने दिन भर काम में बोल रही है।
3: अच्छा जी,
2: हम सोचे नहीं की रोज रिकॉर्डिया हो तो सही है। आपसे मैं 3 दिन बातें करे के बाद
3: तो रघुवा भी बहुत ही अच्छा बोले, बात करके भी अच्छा लगे
2: ना। समझ रहे ना, रघुवा से मैं बात करे बहुत अच्छा लगे ना। कैसे बहुत अच्छा लगे बोले।
3: हाँ तो अभी बताए, खाना वाना खाने है कि ना?
2: जी खाना में तो खा ले लगा नहीं।
3: चलिए ठीक बात है।
2: हाँ तो फरमाइश बता दी, भक्ति संग बन सको तो नहीं
3: बता दी।
2: कुंडलाल के यार, कुंडलाल यादव के गाना बजा दी छठ पूजा के। छठी मैया हमें आर्मी लभर को।
3: और गाना के सुनाए के भी चाहता नहीं,
2: डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको, भारती दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और ऋषि दीदी को और सोनू सर के, अक्षर सर के, पंकज सर से, डेरेकर सर के और रानी जी है ना, रानी जी।
3: जी जी
2: उसको भी सुनवाना है, रेशमा जी को सुनवाना है, राघव जी को सुनवाना है और धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली सुनते हैं सुनवाना है, दिलीप राम को सुनवाना है, उत्तम सोनी को सुनवाना है और करिश्मा जी को सुनवाना है, मेरा भाई एक छोटा वाला दृष्टि को सुनवाना है और मेरे गाँव का एक मनीष भैया है उसको भी सुनवाना है।
3: गाना हम प्ले करते हैं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
2: नमस्ते दीदी।
3: जी नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। हम तो बिल्कुल ठीक बने, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसा बने।
1: बिल्कुल ठीक बने। लगाए तो दुए बार में लाग जाए, पहले ट्राई है ना कोई लोग।
0: अच्छा तो ट्राई करम तब न लागे।
1: गाना आज सुना दू भोजपुरी गजल, मतलब के बाजाना देव कुमार सिंह के, ये गजल तो सुने के बच्चे।
0: अरे वैसे बताई तो रहो को सुने नहीं गाना।
1: सोने में रोजे कर ले, गाने तो हमारे जिंदगी के सहारा है। सुबह से लेके जब तक रात तक नींद न आए जब तक गाना ही सुने के।
0: अच्छा
1: गाना याद रही ना।
0: हाँ, बिल्कुल
1: आसान विश्वासदायक गाना है हमारा।
0: जी बिल्कुल। डेडिकेट भी करे के चाहते नहीं।
1: डेडिकेट रही पारसी जी के, मनोरमा जी के और अनिल भाई के जोधपुर वाले, रंजन बाबा के भी आई डेडिकेट रही और कितना सारा जाने वाला बालो सबके।
0: जी चलिए तो फिर एक साथ ही गाना हम प्ले करता नहीं। जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, मैम अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैम, थैंक यू। क्या हाल है?
6: जी हाल तो ठीक है, आप बताइए।
5: मेरा भी ठीक है। आप मनोरमा मैम बोल रही हैं क्या?
6: हाँ जी।
5: बताइए, हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, आपका नाम को पता करनी है।
6: अच्छा जी, वैसे आपका नाम?
5: मैं साजिया नवादा से बोल रही हूँ।
6: जी साजिया जी, तो आप कैसी हैं? ठीक कहा ना?
5: हाँ बढ़िया है, आपने बताइए।
6: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ।
5: नाता वगैरह हो गया है?
6: हाँ जी हो गया है। और आपका?
5: जी हो गया है।
6: तो वैसे साजिया जी, मैं आपको एक बात बता दूँ की
5: जी जी
6: आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
5: माशाल्लाह, आपको भी तो आवाज बहुत प्यारी है। आप तो बताइए, सब बढ़िया है ना?
6: जी जी सब बढ़िया। तो साजिया जी, क्या है आज की आपकी फरमाइश?
5: आज की फरमाइश, आज का फरमाइश है ना, तो है राजा तोहर बोली है मिठाई भी हम लागे।
6: नितेश पांडे की आवाज में है?
5: हाँ शायद मैं वही वाला गाना सुनाना चाहती हूँ।
6: अच्छा जी, तो क्या आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन में गाना?
5: हाँ हाँ बिल्कुल,
6: सुना दीजिए।
5: की राजा तोहर बोली है मिठाई भी हम लागे। आपको ना ही आता है गाना?
6: अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ना आप गाना सोच के रखिएगा, हम आपसे गवाएंगे। ठीक है,
5: सुनिए ना दूसरा गाना गा दे।
6: जी बिल्कुल,
5: चलिए गा रहे हैं।

0: चलो बस।
1: वाह सादिया जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया।
0: थैंक यू मैम
1: जी, तो सादिया जी जो गाना आप बताएं कि वो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
2: सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सोनू भाईजान को और लिस्टनर को और मेरी भाभी है चंदा, उनको भी सुनाना चाहती हूँ। दिलीप राम भाई को, शबनम को, गुड़िया को, रोशनी को, निशा भारती एंड निशा चौहान, देहरादून वाले भैया को और समीर भाई को, आजाद भाई को, कमरान भाई को और सुनने वाली और लिस्टनर को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके सादिया जी, तो चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है
0: स्वागत से बोलता ने रमा जी प्रसाद
1: जी जी का हाल चाल बा?
0: हाल चाल ठीक बा, हम तक बहुत भाग बा। गाना सुना दी
1: शादी
0: बनवारी हो हमारे बलमा गवार।
1: भाई गाना रुआ गा के बता सकते हैं दुल्हन?
0: अच्छा पहलगा अवसर यह बनवारी हो बलमा हमारो गवार।
1: अच्छा और एक सुनाए के विचार तो नहीं गाना?
0: जितना रेडियो सुनता सब कुछ सुनिए।
1: गाना हम प्ले करते नहीं।
0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैम नमस्ते।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी रेडियो 90.4 FM में।
6: जी मैम धन्यवाद। मैम बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। और मैम वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है?
5: जी मौसम बता दूँ कि धूप निकला हुआ है।
6: जी जी जी बारिश तो अभी नहीं है, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है। हम तो सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं मैम, मैहर MP से।
5: जी जी जी और बताइए आप ठीक ठाक हैं?
6: जी जी बस बैठे थे मैम, बस ठीक है मैम। अभी तो चाय नाश्ता हो गया है। आपका मैम?
5: जी जी मेरा भी हो गया।
6: जी मैम तो आज सरवाइव बता दूँ मैम।
5: जी बिल्कुल बता दीजिए।
6: फिल्म परदेश का गाने से बोल है, नहीं होना था नहीं होना था, हो गया मुझे प्यार, यही सुनवाएंगे। और कितना रेडियो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। और सुनते हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका रेडियो रिमझिम, सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। दोस्तों को फरमाइश अपनी फरमाइश शामिल हो जाता है तो बहुत अच्छा।
5: आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए सुनिए तो फिर आपके गाना को हम प्ले करते हैं।
6: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
0: जी सलाम मैम, कैसे हैं आप?
1: जी वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक बन।
0: जी और सब खान नाश्ता बने हो गए?
1: हाँ हाँ हो गई। आज आवाज में चेंजिंग कैसे आ गई जी?
0: चेंजिंग ऐसे आ गई कि भोजपुरी बाज बोलता नहीं है वजह से।
1: अच्छा,
0: कुछ नहीं है, रंगो से भोजपुरी में बात कर ले।
1: हाँ हाँ वैसे रघु बड़ा अच्छा बोल लेता नहीं।
0: जी मैम, कोशिश तो करता नहीं भोजपुरी बोले के।
1: हाँ हाँ अच्छा लागत है।
0: जी मैम, रंगवा से आज तक मतलब भोजपुरी में बात ना भेज रहा।
1: हम तो कंफ्यूज बनी क्या आवाज में अचानक से चेंजिंग कहाँ से आ गई? चलिए तो आप ये फरमाइश का बार आओ।
0: फरमाइश से पहले बताइए नाम का बार।
1: नाम बता दी सरस्वती पत्नी ना?
0: जी चलिए सही बताइए, लेकिन सोच बताइए। जी मैम, तो बताइए कैसा लगा था भोजपुरी में और गाना का फरमाइश करिए।
1: जी जी रघुआ भोजपुरी में बोलते हैं तो बहुत ही नीक लगा था।
0: उम्मीद करते नहीं सभी दोस्तों की अच्छी लगी।
1: जी जी लोग
0: तो गाने का फरमाइश बाले दुल्हनिया से गाना की बोल बा का आवाज बा गाने का बोल बा हो गया है तुझको तो प्यार सजना। चलिए मैम, तो ये वाला गाना बताइए गाना कैसा हुआ?
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा बा। और ये बताइए गाना क्यों के सुनवाए की चाहत बनी?
0: सुनवाए के सभी रेडियो दोस्त के बा, स्पेशल रघुआ के बा, कहा की रघुआ का अच्छा लगी। उम्मीद करते नहीं गाना बहुत अच्छा बा।
1: जी जी चलिए ठीक बात, तो फिर अब गाना हम प्ले कर पानी।
0: ओके मैम
1: जी,
0: बाय मैम,
1: बाय। के साथ रेडियो 90.4।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
2: बस बढ़िया है, रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
1: चलिए
2: जी,
1: तो और बताइए, खाना वाना हुआ?
2: हाँ हो गया ना।
1: चलिए बढ़िया, तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
2: जी मैडम, पिक्चर का नाम है हम और गाने के बोले कागज कलम दबा दिला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा है
2: जी, और कुछ दोस्तों को भी याद करना चाहूंगा जो उसके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: जी बिल्कुल
2: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है, अमर सिंह गिल है दिलवाली पठार से, और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिचिया से। इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: ओके सुनील जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
2: ठीक है ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिन 90.4 असम ना।
1: नमस्कार बेटा, मैं
0: जी नमस्कार। जी
1: सचिन कुशवाहा बात कर रहा हूँ। ठीक
0: सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: है, अपना बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अभी तो मेरा गांव पड़ेगा बिहार में, अभी मैं पूना में हूँ, पूना में काम करता हूँ।
0: अच्छा जी, तो सचिन जी क्या आप हेलो मैच में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, बहुत बार जुड़ चुका हूँ।
0: अच्छा जी,
1: जब मेरे को
0: तो
1: टाइम मिलता है तो जुड़ता हूँ, अभी 1 महीना बाद जुड़ रहा हूँ।
0: अच्छा जी
1: हाँ, मेरे को टाइम मतलब कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं है मेरे,
0: जी
1: आज छुट्टी पे हूँ तो सोचा जुड़ जाऊँ।
0: जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: काम करते हैं बेल्डिंग का, आर्गन बेल्डिंग।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है। तो और बताइए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: गाना सुनना है मेरे को छठ पूजा का, कोई भी पवन सिंह का आवाज में।
0: जी, और गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं ना?
1: सबसे पहले आपको, जितने भी रेडियो न्यूज सुनते हो सभी श्रोताओं को।
0: ओके जी, वैसे तो
1: अभी
0: सचिन जी आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर एफएम के माध्यम से?
1: मोबाइल ऐप के जरिए मेरे को जब टाइम मिलता है सुनता हूँ, नहीं टाइम मिलता नहीं सुन। मेरे कंपनी मतलब मोबाइल अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था उसके बाद बंद करती है। ठीक
0: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: है, धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमारे बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on चंदा कैसेट्स।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।